और एक्सरसाइज को भी अपने रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं। वैसे अभी जो है धीरे धीरे जैसे सुबह होगी तो लोग अब पार्क वगैरह में घूमने के लिए जाएंगे, और हिस्सा तो ये हेल्थ को जरूर बनाना ही चाहिए, कि अच्छी स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। और वैसे भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए FM गोल्ड पर बजने वाले इन गानों को, सुनते रहिए भोर सुहानी। मैं हूँ पंकज आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर, और इन दो गाने के बाद में आपसे फिर मिलता हूँ।

चोर पुलिस मूवी का ये गाना आपने सुना, और अब जो है मैं पंकज भूर सुहानी शो से आपसे अनुमति लेता हूं और अगले घंटे मुक्ता होंगी आपके साथ अर्पण शो में। तो इसी तरह सुनते रहिए हर पल आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। दोबारा आपसे जल्दी मिलूंगा, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए नमस्ते।

गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सभी तरह के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में सहायता करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में होगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के इस सम्मेलन में नौसेना के

0: वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों के संचालक तथा क्षेत्रीय कमांडर भाग लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्री हितों की रक्षा में नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमरीका की यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। श्री गोयल अन्य सदस्य देशों के व्यापार और उद्योग मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। श्री गोयल अमरीका के वाणिज्य मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसमें भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने तथा अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना DDPA की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा बढ़ाने को भारत का रुख स्पष्ट किया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत जिन मतदाताओं को त्रुटियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। इसका उद्देश्य मतदाताओं के लिए सुनवाई प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इस बीच SIR के अंतर्गत आज से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई है। सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक गतिविधि का विस्तार जारी है। जुलाई की IIP वृद्धि दर पहले के 6.7% के अनुमान से बढ़कर 7.4% हो गई है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल 45 पदक प्रतियोगिता में जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Union Home Minister Amit Shah inaugurated the conference on Prahar, National CET Policy and Strategy in New Delhi yesterday. The conference deliberated upon the 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning with international efforts, and recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said the government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said, as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shehzad Bhatti network involved

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

कॉफी के नाम हो जाए। यस, आप अपनी कॉफी कप को हाथ में रखकर मेरा इंटरेस्टिंग सा शो सुनिएगा। कॉफी फॉर सम पीपल इज अ मॉर्निंग रूटीन, फॉर सम इट इज एन इवनिंग कंपेनियन, फॉर सम इट इज अ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर, और कुछ लोगों के लिए तो कॉफी नहीं मिली तो मॉर्निंग स्टार्ट ही नहीं होती है। बट कॉफी इज मच मोर देन जस्ट अ बेवरेज। बिहाइंड एवरी कप देर इज अ स्टोरी, फ्रॉम द कॉफी प्लांट टू द फार्मर टू हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, वेस्टिंग, ग्राइंडिंग एंड फाइनली योर कप। ग्रैब योर कप, सिट बैक एंड लेट अस बिगिन आर शो। यस, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता दीजिएगा कि व्हाट इज हैपनिंग इन योर टुडेज मॉर्निंग, लाइक कॉफी के साथ क्या हो रहा है, हाल चाल पूछती हूँ और आप बता दीजिएगा। मुझे पता है सब लोगों को हमारा व्हाट्सएप नंबर पता ही है, फिर भी मैं एक बार बता दूंगी, 0402323482। यस, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके व्हाट्सएप मैसेजेस के साथ। और हमारे फर्स्ट मैसेज ऑफ द डे हमारे सर्वर अली सर मैसेज कर चुके हैं गुड मॉर्निंग मैडम बोल के। यस, वेरी गुड मॉर्निंग सर, और मेरा आवाज़ रिकॉर्ड करके सर ने भेजा है, थैंक यू सो मच फॉर दैट सर, सो स्वीट ऑफ यू। यस, मैं वेट कर रही हूँ और भी मैसेजेस के लिए और भी बहुत सारी बातें के लिए। यस, सुनते रहिएगा। और कॉफ़ी बोले तो एल्डेस्ट डॉटर याद ही आती है, इसीलिए टेलर शिफ्ट आ रही हैं एल्डेस्ट डॉटर सॉन्ग के साथ। स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी।

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్
2: జాగ్తే రహో జాగ్తే.
3: ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 ఐచీ నగోయా.
4: Good morning once again and welcome back to the second update of the day from the Asian Games 2026 in Aichi, Nagoya. I am Prerna Sharma and I have Mudita with me. The morning has already brought some interesting developments for India with the silver medal, and we'll begin this update with the latest again from the cycling track. Women pursued cycling. The Indian women's team pursued quartet of Harshita Jhakar, Pooja Dandole, Meenakshi and Swasti Singh, finished fifth in the qualification round. The result has taken them through to the head-to-head heats, where they will now look to build on their qualification performance and continue their campaign. So, Mudita, what is there from the shooting range for our listeners?
5: Prerna, jaisa ki aapne bataya ki aaj subah hi trap shooting mein Bharatiya Mahila team ne shandar pradarshan karte hue rajat padak jeeta hai. Wahin trap shooting mein hi Neeru Dhanda ne vyaktigat final ke liye qualify kiya tha aur ab medal ke liye unka mukabla jari hai. Kaafi ummeedein hain Neeru se, kyunki iske pehle ke round mein wo sheersh par rahi thi.
4: And now coming to sports climbing, India's Jogga Purti has officially qualified for the knockout finals in the women's speed climbing event. She clocked a time of 7.28 seconds to secure the 9th position overall, with the official cue next to her name confirming her spot in the next round. At the top of the leaderboard was China's L Deng, leads the standings with the game's record time of 6.23 seconds, followed closely by South Korea's Jae Jeong at 6.25 seconds.
5: तीरंदाजी में जहां सुबह धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने हमें अच्छी खबरें दी थी, तो वहीं अब रिकर्व विमेंस इंडिविजुअल में राउंड ऑफ 16 में कुमकुम अनिल महूद और कीर्ति शर्मा क्वालिफाई करके अगले राउंड में पहुंच गई हैं, यानी राउंड ऑफ 8 में प्रवेश कर गई हैं. कुमकुम ने मंगोलिया की बिशिंदी उरान तुलंगलाक को, वहीं कीर्ति ने वियतनाम की हुआंग फुआंग थाओ को हराया. राउंड ऑफ 8 के मुकाबले जारी हैं.
4: And Mudita, if looking back at the earlier action from the Pacific Long Beach in Tahara, surfing made its official games debut and a huge milestone for the sport. In the men's shortboard quarterfinals heat 4, India's Kishore Kumar Annabarasu went head-to-head against Toby Espejon of the Philippines. Kishore put up a spirited effort on the waves, finishing with a score of 5.37 to Espejon's 8.53, which unfortunately ended India's historic run just shy of the medal rounds. Even though the campaign came to a close, Kishore's quarterfinal appearance marked a landmark moment for Indian surfing.
5: और अब बात टेनिस की, जहां मेन्स सिंगल्स में दक्षिणेश्वर सुरेश और इंडोनेशिया के गुनावन त्रिसमुवंत्रा के बीच मुकाबला जारी है. फिलहाल डी सुरेश लीड कर रहे हैं 7-5 और दूसरा सेट बराबरी पे चल रहा है. उम्मीद है कि वो भी यहां से अगले राउंड में प्रवेश करेंगे. वहीं टेनिस में ही कल जो सुमित नागल का मैच बारिश के कारण स्थगित कर दिया गया था, उस मैच में पहले सेट में नागल 3-2 से आगे चल रहे थे, लेकिन बारिश के कारण उस मैच को रोकना पड़ा था, तो ये मैच आज फिर से होगा. टेनिस में ही पुरुष डबल्स के मुकाबले भी आज शेड्यूल्ड हैं. युकी भामरी और दक्षिणेश्वर सुरेश की जोड़ी कजाकिस्तान के बेबिट जुकायेव और डेनिस येवसेयेव की जोड़ी का सामना करेगी. अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बाला

0: जी का मुकाबला नेपाल के प्रदीप खड़का और अभिषेक बस्तोला की जोड़ी से होगा। वहीं मिश्रित युगल में एन श्रीराम बालाजी और अंकिता रैना का सामना हांगकांग के क्यारन थॉम्पसन और यूडिस चोंग की जोड़ी से होगा।
1: And there is plenty of Indian action to look forward to as the athletics program reaches its final day with 9 finals featuring Indian athletes or teams. Dev Kumar Meen and Kuldeep Kumar will compete in the men's pole vault final, while Pooja and Supriya Basavaraju will contest in the women's high jump final. In the men's 5000 meters final, double medalist Gulveer Singh and Avinash Sable will be in action, while Anushka Yadav and Tanya Chaudhary will compete in the women's hammer throw final. Medals will also be decided in the men's and women's 800 meters, as well as the men's women's and mixed 4x400 and 4x100 meter relay finals. And looking at the medal position, India is currently holding 12th place on the overall medal tally. The Indian contingent has secured a total of 46 medals, comprising 4 gold, 21 silver and 21 bronze medals. Talking about the top 3 leaders, in first place we have China leading the standings by a huge margin with 234 total medals, 135 gold, 53 silver and 46 bronze. Second place Japan and third place South Korea.
0: और वहीं आज आगे जिन मुकाबलों पे हमारी नजर रहेगी प्रेरणा, उसमें बॉक्सिंग के मुकाबले बहुत अहम है क्योंकि वहां मेडल्स हम पक्के कर चुके हैं, मेडल का रंग बदलना बाकी है। वहां वेमेन्स 65 kg में परवीन का मुकाबला होगा चाइना की ली शू से, जो अभी शुरू होने वाला होगा। और इसके बाद पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में अंकुश का मुकाबला होगा फजलुद्दीन एर्किनबोयेव से और नरेंद्र का मुकाबला होगा एबेक ओराल बे से, जो कि कजाकिस्तान के हैं और ये 90 किलोग्राम के भार वर्ग में होगा। तो इसके साथ ही ये अपडेट खत्म करने का समय हो गया है। हमें दीजिए इजाजत, ठीक एक घंटे बाद हम फिर से हाजिर होंगे नई और ताजा अपडेट्स के साथ।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

हाँ जी, नमस्ते, हेलो, आदाब। यस, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी। और अब तक आपने सुना है 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 बीइंग हेल्ड इन जापान। यस, पीरियोडिक FM अपडेट्स हैं, वो हर घंटे को आते हैं, प्लीज डू लिसन। यस, आज का हमारा प्रोग्राम थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ऑर्गन की जो हमारे लिए सिर्फ एक बॉडी पार्ट नहीं, इट इज़ समथिंग दैट क्वाइटली वर्क्स फॉर अस डे एंड नाइट विदाउट टेकिंग अ हॉलीडे, विदाउट आस्किंग फॉर अ ब्रेक। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आर हार्ट, हमारा दिल। यस, एंड आज 29 सितंबर दुनिया भर में वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में ऑब्जर्व करता है। आज इस साल का इम्पॉर्टेंट मैसेज है, मैं बता दूंगी ना, आपको पता नहीं है तो। यस, डोंट मिस अ बीट, मतलब अपने हार्ट के सिग्नल्स को इग्नोर मत कीजिए। कभी कभी हम अपने फ़ोन की बैटरी 10% होने पर इमीडिएटली चार्जर ढूंढने लग जाते हैं, है कि ना? यस, लेकिन अपने बॉडी के सिग्नल्स को क्या करते हैं, कल देखते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लूँगा तो अच्छा हो जाऊँगा, गैस होगी शायद, स्ट्रेस होगा, ऐसा करते करते हेल्थ को पोस्टपोन कर देते हैं। तो वो सब छोड़कर हार्ट के बारे में भी सोचना ज़रूरी है, और सोचो भी। यस, आ रहा है हमारा फेवरेट सा गाना और हर शो में डाला हुआ गाना। यस, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी।

0: హే, వెరీ హంగ్రీ. వాట్ స్పెషల్ టుడే?
1: బిర్యానీ, కబాబ్స్, హలీమ్. బట్ వెయిట్, దిస్ మోర్.
2: మోర్ దాన్ ఫుడ్, ఇట్స్ ద స్టోరీస్ బిహైండ్ ద రెసిపీస్, ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద కిచెన్స్ అండ్ ద ఫ్లేవర్స్ దట్ షేప్డ్ అవర్ సిటీ.
0: అండ్ వెయిట్ టు బి టేస్ట్ ఆల్ దిస్
1: ఆన్ జష్నే హైదరాబాద్ ఎవ్రీ ఆఫ్టర్నూన్ అట్ 2 o'clock ఆన్ FM రెయిన్బో 101.9.
2: From Charminar's Irani Chai to the evolution of Hyderabadi biryani, it's a feast for your ears.
3: Jashne Hyderabad, savor the city's soul.
4: Yes, welcome back to Akashwani Hyderabad 101.9 FM Rainbow with me RJ Vaishnavi. And I have said that message will be sent to me, I will say. Yes, on our WhatsApp number, there are many messages that are saying, ma'am, like RJ Vaishnavi, it's a very big day today. Yes, it's a very big day, sir. Thank you so much. And they're saying food, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब कुछ मायने में रखता है हार्ट के हेल्थ के बारे में बोल के. यस सर, बहुत कुछ मायने में रखता है हार्ट के हेल्थ के बारे में. नॉट ओनली फूड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कहीं सारे ऐसे टारगेट्स हैं कि हार्ट को वो इट मे कॉज डैमेज. यस, हम बात करेंगे इसके बारे में. आप सुनते रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा. यस, और एक मैसेज आया है, आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है बोल के. या थैंक यू सो मच, मेरी आवाज़ सुरीली है और आप सुन रहे हैं इसलिए और भी सुरीली हो गई है. यस, एक अननोन सा कॉन्टैक्ट है, उन्होंने बोला कि यंग पीपल को हार्ट हेल्थ के बारे में कब से सोचना चाहिए. बोले तो स्टार्टिंग से सोचेंगे तब भी पता चलेगा उनको उनका हार्ट कितना मायने में है बोल के. यस सर, डेफिनेटली मैं भी वही बोल रही हूँ. यंग पीपल, बुजुर्ग लोग, कोई भी लोग हो, हार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है. यस, स्टे ट्यून्ड टू हैदराबाद, आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी.

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: एशियन गेम्स आईची नगोया में भारत के हिस्से आई है शानदार सफलता, स्वर्णिम सफलता। नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा के फाइनल में शानदार परफॉर्मेंस के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है। नमस्कार, मैं हूं मुदिता और मेरे साथ हैं प्रेरणा शर्मा। 26 साल की भारतीय शूटर ने 30 में से 28 शॉट स्कोर किए और टॉप पर रही, जो उनकी सबसे करीबी प्रतिद्वंदी चीन की सुन युनोंग से 2 शॉट आगे था। उनके स्कोर ने एक नया एशियन रिकॉर्ड और एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया है। इस जीत के साथ नीरू एशियन गेम्स में इंडिविजुअल ट्रैप शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है और उन्होंने ये गोल्ड मेडल के साथ किया है। 26 साल की नीरू ढांडा भारत की लीडिंग ट्रैप शूटर हैं। 2022 में ओसिजेक में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और तब से ISSF सर्किट पर एक रेगुलर फाइनलिस्ट के तौर पर वो दिखती हैं। 2025 में उन्होंने विमेन ट्रैप इवेंट में अपना पहला एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता और शॉटगन शूटिंग में भारत की टॉप परफॉर्मर्स में से एक बन गई। 2026 में नीरू ने इटली के लोनाटो में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में विमेन ट्रैप में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF वर्ल्ड कप में ट्रैप मिक्स टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया। तो इसके साथ ही एक नया रिकॉर्ड, एक नई सफलता, लगातार सफलता प्रेरणा नीरू ने हासिल करी और भारत के लिए भी अब स्वर्ण पदक की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई है। शूटिंग में ये दूसरा गोल्ड मेडल है।
2: And there is also a big result coming in, Mudita, from boxing. India's Parveen Hooda has stormed it into the women's 65-kilogram final after commanding a 5-0 victory over China's Li Shu in the semi-final. With this win, Parveen becomes the first Indian boxer at the ongoing Asian Games to book a place in a gold medal bout. She will now compete for the top prize in the final. This is also a significant return to the Asian Games stage for Parveen, who had won a bronze medal at the Hangzhou Games.
1: बिल्कुल प्रेरणा। और अब हम चलते हैं आर्चरी की तरफ। रिकर्व विमेंस इंडिविजुअल में कुमकुम अनिल मोहोद ने बांग्लादेश की साइमा सलाहुद्दीन को 6-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जहां उनका मुकाबला अब होगा रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कांग चाई यंग से। कांग चाई यंग ने भारत की ही दूसरी निशानेबाज कीर्ति शर्मा को 7-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। ये दिलचस्प मुकाबला अब देखने वाला और बन गया है प्रेरणा। वहीं धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने भी आज सुबह अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहले ही जगह पक्की कर ली है।
2: The day has been unexpected for us and we have another result coming in from tennis. India's Dakshineshwar Suresh has booked his place in the next round of the men's single after a straight set victory over Indonesia's Guawan in the second round. Suresh won the match 7-5, 7-6 with the second set going to a tiebreak, which he won 7-2. It was a strong serving performance from the Indian, who won 80% of his points behind both his first and second serves in the opening set, improving his second serve percentage to 85% in the second. There was just one break of serve in the entire match, which came in the opening set before Suresh held his nerve in the second set tiebreak to steal the win. And India's Sumit Nagpal is also currently dominating his men's single round match against South Korea's Seong Chun Hong. After taking the first set 6-4, Nagal has rode head

0: ahead in the second set with a 2-0 lead as the match continues live at the Nagoya City Higashimiya Park Tennis Center.
1: जी, और इसके साथ ही अब आने वाले मुकाबलों के बारे में प्रेरणा हमें बताइए आप.
0: एंड उससे पहले इंडिया हैज नाउ ऑफिशियली क्लाइम टू द 11th प्लेस ऑन द ओवरऑल स्टैंडिंग्स विद another gold medal added to the collection, and India's count now stands mutata at 5 gold and 21 silver and 21 bronze, bringing the total tally to 47 medals. Team India is now sitting right on the edge of the top 10, and we are just behind 10th placed Malaysia.
1: तो इस बड़ी खबर, इस स्वर्णिम खबर के साथ ही हम अब इस अपडेट को समाप्त करते हैं. अगले अपडेट में हम शायद और पदकों की खबर के साथ वापस आएंगे प्रेरणा, और अपने श्रोताओं से फिर से मुखातिब होंगे. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार.
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया.

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

0: जापान में एशियाई खेलों में नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किया। भारतीय टीम ने कुल 328 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। चीन पहले और कुवैत तीसरे स्थान पर रहा। एशियाई खेलों में भारत कुल 47 पदकों के साथ 11वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें 5 स्वर्ण, 21 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ADGPI पर पोस्ट कर इस मुलाकात की जानकारी दी। अमरीकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा हालात पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सऊदी अरब भारत का भरोसेमंद और महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, संस्कृति और पारस्परिक आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने दोहा में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2026 वार्षिक बैठक के दौरान सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान से मुलाकात की। श्री जदान ने भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और बेहतर निवेश माहौल के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को बधाई दी। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत के सफल समापन का स्वागत भी किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमरीका यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पारादीप बंदरगाह दल के त्वरित संयुक्त बचाव के प्रयासों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत के बंदरगाह हर समय पूर्ण समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ओडिशा के पारादीप तट के पास जहाज लगभग 9000 मीट्रिक टन पाम ऑयल ले जा रहा था और उसमें 23 चालक दल के सदस्य सवार थे। रविवार सुबह मुख्य इंजन के फेल होने और गिट्टी टैंक में तेजी से पानी भरने के कारण जहाज एक तरफ झुक गया, जिसके बाद जहाज ने आपातकालीन संकट कॉल जारी की थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी पदाधिकारियों की ये पहली बैठक है। इसमें पार्टी की संगठनात्मक प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आज विश्व हृदय दिवस है। हृदय रोगों, उनकी रोकथाम और वैश्विक प्रभाव के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 257 अंक गिरकर 72,514 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Neeru Dhanda has made history by becoming the first Indian shooter to win gold medal in the women's trap individual event at the Asian Games 2026. This was after she carried India to a silver medal in the women's trap team event with Ashima Ahlawat and Manisha Kher. In boxing, Parveen Hooda and Ankush Bangal have stormed into the gold medal bouts of their respective weight categories with semi-final wins at Nishio today. In athletics, India secured a double podium finish in the men's javelin throw. Yashveer Singh won the silver medal, while Rohit Yadav claimed bronze. The government has said the country's national highway network has grown by nearly 61% to over 1,46,000 kilometres in March this year from over 91,000 kilometres in 2014. This rapid development has strengthened connectivity, improved access to markets, and supported faster movement of people and goods. The greening of India's national highway network is guided by the Green Highways Plantation, Transplantation, Beautification and Maintenance Policy 2015. Five new sites and serial and transnational proposals have been included in India's UNESCO tentative list, increasing India's count to 78. The newly added sites include the Buddhist murals of Bagh cave paintings, group of temples of the Chambal Valley, the Gupta era Udaygiri caves, the tribal legacy of Ginnorgarh, and the sites of Satyagraha. In a social media post, Union Minister of Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat said these additions reflect the extraordinary diversity of India's heritage. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will be on a visit to the US from today till the 5th of next month. During the visit, Mr. Goyal will participate in the two-day G20 trade ministers meeting, which will commence tomorrow. Mr. Goyal will also hold bilateral meetings with his counterparts on the sidelines of the G20 meeting. Minister for Ports, Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal has hailed the Paradeep Port team's efforts for its swift joint rescue and execution following a major maritime incident involving a Belize-flagged chemical tanker MT Seagull 9 near Odisha's Paradeep coast. In a social media post, Mr. Sonowal said India's ports are committed to ensuring absolute maritime safety and environmental protection at all times. The Defence Ministry has informed that the vessel was carrying nearly 9,000 metric tons of palm oil with 23 crew members on board. The US will not charge any tariff on certain specialty drugs and associated ingredients used for treatment of rare medical conditions imported from India and 19 other countries. The US Commerce Department published the list of countries in the Federal Register as it prepares to impose a 100% tariff on certain patented pharmaceutical imports and their associated ingredients from September the 29th. World Heart Day is being observed today to raise public awareness about cardiovascular diseases, their prevention and their global impact. In a social media post, Union Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda has said the day reminds people to recognize warning signs, adopt healthy lifestyle practices, manage risk factors and seek timely care. He informed that the theme this year is Don't Miss a Beat. The minister also renewed his commitment to protecting heart health and preventing cardiovascular diseases. In France, over 160 people were arrested and dozens were injured after high school student protests turned violent yesterday. Teenagers across the country have been blocking their schools since last week to protest overcrowded classrooms, heavy workloads, poor learning materials and a shortage of teachers. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% down in the forenoon session today. The Sensex dropped 257 points to 72,514, while the Nifty lost 64 points to 22,716 when reports last

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: Welcome once again to the updates of the Asian Games in Aichi, Nagoya. India have made a strong start to the day with the country adding another gold and several athletes making their way into the medal rounds. Neeru Dhanda has won India's fifth gold medal of the Games in the women's trap event. Neeru had earlier teamed up with Manisha Kheer and Ashima Elawar to secure a silver medal in the team trap event and has now followed that up with the gold in the individual competition. In recurve archery, Neeraj Chauhan has registered a notable victory over Republic of Korea's Kim Ji-deok, a multiple-time Olympic and World Championship medalist. The result keeps Neeraj's campaign moving forward and strengthen India's hopes in the event. There is also plenty to cheer about in boxing, where Parveen Huda and Ankush Panghal have both won their respective semi-final bouts to book places in the finals. Parveen produced a commanding 5-0 victory over Xian Liu Xing in the women's 65 kg semi-final to become first Indian boxer at these games to enter the gold medal bout. Ankush had also secured his place in the final, assuring India of at least 2 silver medals in boxing. And building on that massive bout to a medal count, where shooter Neeru Dhanda scripted history by winning India's 5th gold medal in the women's trap event with a record-setting score of 28, the action at the shooting range is far from over. All eyes are now locked up on the trap men individual final, where Shapat Bharadwaj is battling it out in the medal round. He's currently sitting in the 7th place with a score of 7 as he looks to stage a comeback and fight his way ahead at the leaderboard. And now Mudita will take you through some of the key developments from across the games.
2: जी प्रेरणा, मुक्केबाजी में अंकुश पंघाल ने एक बड़ा उलटफेर किया है. उन्होंने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान के फजलुद्दीन एर्किनबोग को स्प्लिट डिसीजन में 4-1 से हराकर गोल्ड मेडल बाउट में जगह बना ली है. और ये सफलता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि फजलुद्दीन एर्किनबोग ने 2025 में इसी भार वर्ग में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी. बड़ी सफलता है ये अंकुश की. और इस जीत के साथ ही अंकुश 8 साल के बाद एशियाई खेलों उज़्बेक की प्रतिद्वंदी पर जीत दर्ज करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज भी बने हैं. इसके पहले 2018 में एशियन गेम्स के पुरुष फ्लाईवेट 51 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट अमित पंघाल ने 2016 के ओलंपिक चैंपियन हसन बॉयद उस्मतोव को एक टाइट फाइनल में 3-2 से हराया था. तो इसके साथ ही पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में भी भारत का कम से कम रजत पदक पक्का हो गया है. वहीं नरेंद्र बेलवाल ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है. सेमीफाइनल में वो मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन कजाकिस्तान के एबेक ओरलबे से 0-5 के एक मत फैसले से हार गए. होंगजो चीन 2022 में कांस्य पदक के बाद ये नरेंद्र का लगातार दूसरा एशियन गेम्स मेडल होगा. और इसके पहले परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में चीन की ली शू को 5-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था और पक्का कर दिया था कि कम से कम वहां भी रजत पदक भारत की झोली में आएगा. इसके अलावा 3 और मुक्केबाज भी हैं जो पदक तो पक्के कर चुके हैं, लवलीना बोरगोहेन, प्रिया घनगस और कपिल पोखरिया. अब देखना है कि पदक का रंग कौन सा रहता है.
1: एंड टीम इंडिया इज ऑल सेट टू continue in action in the volleyball court today. And in the men's pre-eliminatory round Pool C, India is head-to-head now against Qatar at the Park Arena Komaki. So Qatar is at 3 and India is also at 3. So we could see, Madhita, ki some live action could come up and some interesting results will be awaited. Some medal will be awaited in volleyball.
2: जी बिल्कुल. और इसके साथ ही टेनिस में पुरुष एकल के दूसरे राउंड में सुमित नागल ने दक्षिण कोरिया के सियोंग चान होंग को सीधे सेटों में 6-4, 6-0 से हराकर अगले राउंड में प्रवेश कर लिया है. सुमित नागल का ये पुरुष एकल का द्वितीय दौर का मैच जो कल बारिश के कारण स्थगित कर दिया गया था वो आज कंटिन्यू किया गया था. इसके पहले ही आज ही दक्षिणेश्वर सुरेश ने इंडोनेशिया के गुनावंत्र सुमवंत्रा को

0: 7-5, 7-6 से हरा कर अगले दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स के मुकाबले भी आज शेड्यूल हैं। यूकी भांबरी दक्षिणेश्वर सुरेश की जोड़ी खेलेगी और अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी भी मुकाबले में होगी। वहीं मिश्रित युगल में एन श्रीराम बालाजी और अंकिता रैना नजर आएंगे।
1: And looking ahead, it's the final day of the athletics program and there are 9 finals lined up with an Indian athletes or team featuring in every one of them. In men's pole vault final, Dev Kumar Meena and Kuldeep Kumar will be in action, followed by Pooja and Supriya Basaravaraju in the women's high jump final. The men's 5000 meter final, we will see double medalist Gulveer Singh and Avinash Sable take to the track. In the women's hammer throw, Anushka Yadav and Tanya Chaudhary will also be competing for a podium finish. There will also be medals at stake in men's and women's 800 meters along with the men's and women's 4x400 meter relays. So Team India is all set in action, and that is it from the updates for now. We will take your leave for now and we'll be back with another Ali update.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: Yes, welcome back to Akashvani Hyderabad 101.9 FM Rainbow with me RJ Vaishnavi, and we have lot many messages today. And cheptunnaru, good afternoon, Madam G. This is Mahesh from Dakshin Flavors, Balanagar. How are you, ma'am? Antunaru. Yes. Hi, sir. I'm very good. How are you doing? And we have also song request from the movie Ghar, and song was Aaj Kal Paon Zameen Par. Yes, definitely. Main gana baja dungi. Thank you for messaging. And there are lot many messages. Main padungi. थोड़ा थोड़ा समय लेकर. यस, एंड इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट के बारे में जान रहे थे. इस डे एक बहुत सिंपल चीज़ के बारे में है, एक ऐसी चीज़ जो हम सबके घर में होती है, जैसे हम रोज़ देखते हैं, रोज़ खाते हैं और कभी कभी बिना सोचे वेस्ट भी कर देते हैं. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट फूड. आज है इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट. फूड हमारे लिए सिर्फ एक मेडल नहीं है, फूड के पीछे होती है फार्मर की मेहनत, सॉइल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, मार्केट और सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन एफर्ट. जब हम फूड वेस्ट करते हैं तो सिर्फ एक प्लेट का खाना वेस्ट नहीं होता है, उस फूड को प्रोड्यूस करने में उस यूज हुए रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं. इसलिए आज का हमारा मैसेज बहुत सिंपल है, वही है फूड की रेस्पेक्ट कीजिए, रिसोर्सेज की रेस्पेक्ट कीजिए. यस, हाँ जी, देर इज़ अ लॉ, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन, लाइक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन बोल के. हम फूड को वेस्ट करेंगे तो अगले ज़माने हमारे बच्चे के लिए, उनके बच्चों के लिए फूड नहीं मिलेगा. तो आज उसको यूटिलाइज करिए, रिसोर्सेज को बचा के रखिए, हमारे बच्चे और उनके बच्चे भी अच्छे खासे खाने को, स्वाद को चख सकते हैं. यस, एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ. अभी हम गाना सुनेंगे फ्रॉम महेश जी, गाना पूछे थे ना, वो गाना मैं बजा दूंगी. यस, स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 एफएम रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी.
3: सुपरहिट गाने इस चैनल पर ही.

को हमारी दुनिया छोड़कर खुद भी तन्हा रह गए और हमें भी तन्हा छोड़कर। वाह, देर आर नो वर्ड्स फॉर दीज लाइन्स। मैं कुछ भी बोल नहीं पाऊंगी अभी इस लाइन्स को, बट या टेक केयर ऑफ योर सेल्फ हुडा, इट्स ओके, एवरी वन आर नॉट विथ अस। एंड एक सॉन्ग लगाए ना प्लीज, बातें ये कभी ना तू बोलना। डेफिनेटली हुडा, मैं प्ले कर दूंगी बातें ये कभी ना बोलना। यस, और भी कई सारे मैसेजेस हैं। गुड आफ्टरनून मैडम, गुड आफ्टरनून वैष्णवी, गुड आफ्टरनून बोल के, यस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और हमारे स्टूडियो क्लॉक में टाइम 12:46 हो रहा है। यस, सुनते रहिएगा आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी।

0: करा पहली चाय आपकी जिंदगी में,
1: जी
0: पहली
1: मैं
0: चाय?
1: वैसे तो गांव में अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ और बहुत बार हुआ ये, लेकिन मुझे यहाँ पे जब हैदराबाद में जो है तो हमारे एक दोस्त हैं प्यारे इकबाल भाई, उनको मेरा बहुत बहुत पुरखुलूस सलाम और शुक्रिया कहता हूँ मैं उनको कि वो मुझे अपना अच्छा दोस्त मानते हैं, जहनी सुकून देने वाला दोस्त मानते हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं वो हमारे, तो हमेशा मेरे पास आते रहते हैं, मिलते रहते हैं और सिर्फ दुआएं लेने के लिए आते रहते हैं। और मुझे उन्होंने बहुत बार बाहर घुमाने फिराने को लेकर गए और उनके साथ बहुत बार मुझे चाय कॉफी नाश्ता करने का बहुत बार मौका भी मिला। लेकिन एक बहुत अच्छा मौका था, हम एक रेडियो चार मीनार चैनल है यहाँ पे, वहाँ के आरजे ने मुझे इनवाइट किया था, बुलाया था, और वहाँ पे हमारे इकबाल भाई, मैं और आरजे हम मिलकर वहाँ पे एक चाय पी रहे थे रेडियो चार मीनार के ऑफिस में, और फिर हमको अवनियर बैठने का भी मौका मिला था वहाँ पे। तो मैं जब रेडियो सुनता था बचपन में तो मैं सुनता था अरे ये क्या हाल, मुझे एक मौका भी मिला वहाँ पे अवनियर बैठने का, लाइव फोन इन प्रोग्राम करने का भी मौका मिला आरजे ने। वो बहुत सारे आरजे थे, बहुत रिस्पेक्ट देते थे, बहुत इज्जत करते थे, और वहाँ पे बार बार मुझे हमारे दोस्त थे हनीफ भाई उनके साथ और हमारे इकबाल साहब और मुनीर साहब इनके साथ जाने का वहाँ पे मौका मिला। आरजे ने हम मुझे बुलाया और उनके साथ बहुत बार चाय पीने के मौके मिले हमको इन दोस्तों के साथ। तो
0: जी
1: ये
0: सर,
1: खूबसूरत मेमोरी है, मेरे याद है मुझे जहन में।
0: अच्छा, थैंक यू सो
1: और
0: मच।
1: हमारे इकबाल भाई के लिए मैं एक सॉन्ग रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहता हूँ मैं आपको। मूवी का नाम बताता हूँ, फिल्म का नाम है खुदगर्ज। खुदगर्ज
0: खुदगर्ज,
1: जी 90s की मूवी है, नितिन मुकेश और मोहम्मद अजीज की आवाजों में है सॉन्ग। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में, लोगों रह जाती है दोस्ती, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। और ये है, आप में थोड़ा ढूंढ के निकालेंगे तो
0: जी
1: जरूर
0: जी
1: मिल
0: जी
1: जाएंगा आपको।
0: जरूर सर, जरूर। थैंक यू सो
1: जी
0: मच फॉर
1: हमारे
0: कॉलिंग।
1: मुमताज बाजी, महजबीन बाजी को, मोहम्मद अफजल साहब को भी सलाम, सभी दोस्तों को, और आप मुझे वक्त दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वैष्णवी जी।
0: थैंक यू सो मच सर, हैव ए ग्रेट डे। यस सर ने बहुत सारी मीठी मीठी बातें शेयर करी हैं। हम डेफिनेटली प्ले करूंगी मैं गाना। फर्स्टली मैं घुमरू सॉन्ग प्ले करूंगी, सुनते रहिएगा आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी।

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च में

0: With the early updates on Asian Games in Aichi Nagoya, and we are shifting right to the live action right now. I'm Prerna Sharma, and I have alongside me Mudita, and the live action inside the park arena Komaki. We have an absolute thriller unfolding in the men's volleyball preliminary round pool C as Team India battles Qatar. So talking about the set one, the Qatar took the opening set by 28 when India remains at 26. A grueling neck and neck 34 minute battle happened in the set one, and Qatar led it. India came into this decisive pool C clash riding massive momentum after consecutive 3-0 straight set victories over Vietnam and Hong Kong China. However, Qatar managed to edge out India in the extra points of set one to draw first blood. And the current match status, the overall score as of now is Qatar is at 16 and India at 18. India is leading for now, and let's see how the second set turns up. India needs to mount an immediate response in the second set to level the contest and stay on the top of pool C. So what is the updates in the shooting? A wonderful day has been there in shooting today, Mudita.
1: Ji bilkul Prerna, shooting mein aaj shandar din raha hai Bharat ka. Ek ke baad ek do safaltaen mili hain. Aaj subah pehle trap shooting mein Bharatiya mahila team ne shandar pradarshan karte hue rajat padak jeeta. हमारे जो श्रोता अभी तक की अपडेट्स नहीं सुन पाए थे, हम उनके लिए फिर से बताना चाहेंगे कि भारतीय महिला टीम ने ट्रैप शूटिंग में रजत पदक जीता. नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने कुल 328 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रही. उसके बाद आई वो सफलता जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था. नीरू ढांडा ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया. महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा के फाइनल में शानदार परफॉर्मेंस रही नीरू की. और ये एक खास बात है प्रेरणा कि ये पहला इंडिविजुअल गोल्ड है भारत के लिए इस एशियन गेम्स में. 26 साल की भारतीय शूटर नीरू ढांडा, उन्होंने 30 में से 28 शॉट स्कोर किए और टॉप पर रही. और इस जीत के साथ नीरू एशियन गेम्स में इंडिविजुअल ट्रैप शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई और उनके स्कोर ने एक नया एशियन रिकॉर्ड और एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया. वहीं पुरुषों की ट्रैप शूटिंग में शपथ भारद्वाज फाइनल में पहुंचे लेकिन पदक के करीब नहीं पहुंच सके. कुवैत के खालिद अल मुदहफ ने स्वर्ण पदक हासिल किया. चाइनीज ताइपे के कुनपी यांग ने रजत और चीन के की यिंग ने कांस्य पदक हासिल किया. तो इस तरह प्रेरणा शूटिंग में अब तक 15 पदक हासिल कर लिए हैं भारत ने, जिसमें 2 स्वर्ण, 9 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं.
0: And some medals have come up officially, and now there are some unofficial medals that have also been confirmed in boxing. And stepping inside the ring, we have massive explosive updates from the Indian boxing contingent, where 3 major medal outcomes have just been locked in. Women 65 kg semi-final, India's Parveen Hooda has stormed her way into the women's 65 kg final. With this dominant victory, she has guaranteed herself at least a silver medal, putting India within touching distance of yet another gold. Talking about the men's 80 kg semi-final, Ankush Panghal delivered a master class in the men's 80 kg semi-final to secure his spot in the gold medal match. He joins the final bound boxers, assuring Team India of at least a silver medal. Talking about men's 90+ kg semi-final, heavyweight star Narendra Berewal stood toe-to-toe in a fierce battle against world champion Ebek Urbale. Despite a courageous fight, Berewal has edged out in this semi-final encounter. Berewal officially signs off with a hard-earned bronze medal for the country. 2 final spots booked and a bronze secured. The Indian boxers are putting on an absolute show in the ring, Mudita.
1: और तीरंदाजी में भी प्रेरणा अच्छा दिन रहा भारत के लिए. धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने पुरुषों की रिकर्व एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है. अगले राउंड में सेमीफाइनल स्पॉट के लिए वर्ल्ड कप फाइनल चैंपियन धीरज का मुकाबला उज्बेकिस्तान के अमीर खोन सादिकोव से और नीरज चौहान का भूटान के लैम दोर्जी से होगा. वहीं महिलाओं की रिकर्व इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में कुमकुम अनिल मोहोत क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं. और दिलचस्प बात यह है कि क्वार्टर फाइनल में कुमकुम का मुकाबला रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कांग चाई यांग से होगा. यांग ने भारत की ही दूसरी तीरंदाज कीर्ति शर्मा को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है.
0: Now taking our listeners to the cycling track where India have made it through to the bronze medal race in the women's team pursuit. The Indian quadrant put together a strong performance in the heats, clocking 4 minutes 46.950 seconds. That effort has secured them a place in the bronze medal race, giving India another opportunity to fight.

0: लोग कैसे बनाते हैं, क्या तरीका है, लेकिन वो मिस बहुत करते हम। लेकिन अब उनकी शादी हो गई, ज्यादा मिलना नहीं हो रहा, बट ऑफिन की चाय बहुत मिस कर रहे हम।
1: आप फ्रेंड्स सुन के ये खुश हो जाएंगे मैडम. या थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए.

0: 101.9।
1: जागते रहो जागते रहो,
2: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
1: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
2: अफवाहों से
1: धोखाधड़ी से
2: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
1: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
2: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
1: सजग भारत,
2: जागरूक भारत।

0: भास्कर और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी भी अगले दौर में पहुंच गई है। दूसरे दौर के मुकाबले में उन्होंने नेपाल के प्रदीप खड़का और अभिषेक बस्तोला की जोड़ी को 6-2, 6-1 से हराया। वहीं पुरुष एकल के दूसरे राउंड में सुमित नागल और दक्षिणेश्वर सुरेश भी अपने अपने मुकाबले जीत कर अगले राउंड में पहुंच गए हैं। अब मिश्रित युगल के पहले दौर में एन श्रीराम बालाजी और अंकिता रैना का सामना हांगकांग के कैरन थॉम्सन और यूडिस चोंग की जोड़ी से होगा।
1: It has been a day of breaking national records. Earlier this morning in sport climbing, Indian speed climber Joga Purthi delivered a sensational performance to a set new benchmark. Competing in the qualification round of the women's speed climbing event, Joga clocked a blistering time of 7.28 seconds, finishing 9th overall and comfortably securing her place in the quarterfinals. That impressive 7.28 second climb not only sealed her spot in the next round, but it also shattered her own previous mark to establish a brand new national record for India in women's speed climbing.
0: और नेशनल रिकॉर्ड की बात आपने की प्रेरणा, तो एक और नया नेशनल रिकॉर्ड आज बना है मेंस पोल वॉल्ट में। देव कुमार मीना ने 5.50 मीटर के साथ अपना पर्सनल बेस्ट देते हुए नया नेशनल रिकॉर्ड भी बना लिया है। गौरतलब है कि 5.46 मीटर का पिछला नेशनल रिकॉर्ड भी देव मीना के नाम ही था, लेकिन इसके बाद भी मेडल की दौड़ से वो बाहर हो गए हैं। वो 7वें स्थान पर रहे हैं। वहीं कुलदीप कुमार 5.35 मीटर के साथ 10वें स्थान पर रहते हुए मुकाबले से पहले ही बाहर हो गए थे। लेकिन एथलेटिक्स में कुछ और खबरें भी हमारे पास हैं, क्योंकि विमेंस 800 मीटर के फाइनल में पूजा 7वें स्थान पर रही, लेकिन महिलाओं की ऊंची कूद के फाइनल में पूजा सिंह का शानदार प्रदर्शन जारी है और 1.80 मीटर के साथ वो टॉप परफॉर्मेंस में बनी हुई हैं। ऊंची कूद में सुप्रिया बासव राजू भी फाइनल में हिस्सा ले रही हैं। और इसके अलावा विमेंस हैमर थ्रो का मुकाबला भी जारी है, जिसके बारे में हम अपडेट लेकर के आएंगे आपके पास अगले अपडेट के साथ में। तब तक उसका रिजल्ट हमारे पास भी आ जाएगा। और अब इसके बाद जो मुकाबले होंगे उसमें मेंस 800 मीटर का फाइनल है, फिर मेंस 5000 मीटर का फाइनल, और इसके बाद रिले रेस है विमेंस और मेंस की 4x400 मीटर, और इसके अलावा रिले मिक्स फाइनल भी है 4x100 मीटर का, जिसमें भी भारत को पदक की उम्मीद है।
1: लेट्स शिफ्ट ओवर टू द एशियन गेम्स लीडरबोर्ड, वेयर टीम इंडिया इज करंटली होल्डिंग डाउन द 11th पोजीशन ओवरऑल। द मेडल कैबिनेट इज अप टू 47 इन टोटल, ड्रिवन बाय 21 सिल्वर, 21 ब्रोंज, बट द क्राउन जूल्स आर द 5 गोल्ड मेडल्स इंडिया हैज लॉक्ड इन सो फार। इन क्रिकेट विमेंस क्रिकेट टीम हैज वन गोल्ड, इन कबड्डी विमेंस कबड्डी टीम men's kabaddi team another gold, Kamaljeet and Suruchi Singh gold, and Neeru Dhanda. The headline story from today's action was Neeru Dhanda's clinical victory in the women's trap individual final. So that is all from the updates for now. We will be back soon with the 5:30 PM updates.
2: Asian Games 2026, IG Nagoya.

0: స్టూడియో క్లాక్ లో సమయం 5 గంటలు దాటి 30 నిమిషాలు కావస్తోంది. మరి 20వ ఆసియా క్రీడలకి సంబంధించి, జపాన్ లో జరుగుతున్న 20వ ఆసియా క్రీడలకి సంబంధించి అప్డేట్స్ విందాం. వింటూనే ఉండండి ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9.
1: नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन गेम्स की ताजा अपडेट्स में. और शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से. भारत ने पदकों का अर्धशतक पूरा कर लिया है इस एशियन गेम्स में. पिछले 1 घंटे में भारत ने एथलेटिक्स के बदौलत 3 कांस्य पदक हासिल किए और आज पूरे दिन में 5 मेडल्स हो गए हैं भारत के, जिसमें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 कांस्य पदक शामिल हैं. एथलेटिक्स में पुरुषों की 5000 मीटर के फाइनल में, उसके अलावा 4x100 मीटर मिक्स रिले और महिलाओं की ऊंची कूद में इन 3 प्रतियोगिताओं में भारत ने कांस्य पदक हासिल किए हैं. हम एक के बाद एक इन सब के बारे में आपको बताएंगे. तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गुलवीर सिंह की शानदार सफलता के साथ. पुरुषों की 5000 मीटर के फाइनल में गुलवीर सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया और इसके साथ ही कुल 3 पदक हासिल किए उन्होंने इस एशियन गेम्स में. उत्तर प्रदेश के अतरौली में पैदा हुए गुलवीर ने इसके पहले 1500 मीटर और 10000 मीटर में सिल्वर मेडल जीते हैं और इसके साथ ही वो भारत के दूसरे ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बने हैं जिसने 2 से ज्यादा पदक हासिल किए हैं एक एशियन गेम्स में. इसके पहले पीटी उषा ने 1986 के सियोल एशियन गेम्स में 5 पदक जीते थे, जिनमें 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक शामिल था. और दूसरी सफलता जो आई है वो आई है 4x100 मीटर मिक्स रिले से, जिसमें गुरिंदरवीर सिंह, अनिमेश कुजूर, राजराजन अभिनया और हरिता भद्रा की चौकड़ी ने कांस्य पदक हासिल किया है. पहली बार भारत ने हिस्सा लिया था इस इवेंट में और पहली बार में ही पोडियम फिनिश किया है. शानदार सफलता है ये भी. इसके अलावा महिलाओं की ऊंची कूद में पूजा सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया. पूजा शुरुआत से ही मेडल की दौड़ में बनी हुई थी, हालांकि उनसे उम्मीद जो गोल्ड की थी उससे वो थोड़ा सा नीचे आई और कांस्य पदक लेकिन उन्होंने हासिल किया. इसी इवेंट में सुप्रिया बासव राजू मेडल की दौड़ से पहले ही बाहर हो गई थी. एथलेटिक्स के बाकी इवेंट्स में महिलाओं के हैमर थ्रो में अनुष्का यादव और तान्या चौधरी कोई मेडल नहीं हासिल कर सकी. वहीं पुरुषों के 800 मीटर के फाइनल में अफसल मोहम्मद पुलिकलालत 8वें स्थान पर रहे.
2: एंड रिकॉलिंग अनदर क्राउनिंग हाईलाइट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे हिस्ट्री.

0: ఇప్పుడు మీరు 20th ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 అప్డేట్స్ వింటారు.
1: नमस्कार. एशियन गेम्स 2026 में भारतीय कंटिंजेंट के लिए आज शानदार दिन रहा है. खास करके एथलेटिक्स में आज पदकों की झड़ी लग गई है. एक और स्वर्ण पदक हासिल किया है भारत ने एथलेटिक्स में. इसके अलावा आज पूरे दिन भर में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, यानी कुल मिलाकर 8 पदक जीते हैं भारत ने. एक एक करके हम उन सभी पदकों के बारे में बात करेंगे, खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे. नमस्कार, मैं हूं मुदिता और स्वागत है आपका एशियन गेम्स के ताजा अपडेट्स में. तो सबसे पहले प्रेरणा, मैं हूं मुदिता और साथ में है मेरे प्रेरणा. तो प्रेरणा, सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड मेडल की, जो आया है महिलाओं की 4x400 मीटर रिले रेस में. किरण एम्पुवम्मा, प्राची और विद्या रामराज की चौकड़ी ने 3:29.69 का समय लेकर टॉप किया और आज के दिन को अपने स्वर्णिम दिन में बदला है. और इस जीत के साथ भारत ने इस इवेंट के इतिहास में अपना 7वां एशियाड गोल्ड जीता और 1982 से हर एडिशन में मेडल जीतने का अपना 44 साल का सिलसिला बनाए रखा है. इसके अलावा जो पदक आया है वो है पुरुषों की 4x400 मीटर रिले रेस में, जहां कांस्य पदक जीता है धर्मवीर चौधरी, मनु थेक्किनिल, विशाल टीके और जय कुमार की चौकड़ी ने. इनका समय रहा 3:01.61. इसके पहले 4x100 मीटर के मिक्स रिले में भी कांस्य पदक जीता भारतीय दल ने. गुरिंदरवीर सिंह, स्नेहा सत्यनारायण, अनिमेश कुजूर और हरिता भद्रा की भारतीय चौकड़ी 41.06 सेकेंड के समय के साथ, यानी 41:06 सेकेंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर रही और इसके साथ ही उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा है. इसके पहले हम बता चुके हैं हालांकि अपने श्रोताओं को, लेकिन एक बार फिर से जिनसे भी मिस हुआ हो हम बताना चाहेंगे कि एथलेटिक्स में 5000 मीटर के फाइनल में गुलबीर सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया और वहीं महिलाओं की ऊंची कूद में पूजा सिंह ने भी कांस्य पदक जीता.
2: And Mudita, while today brought plenty of reasons to celebrate with brand new medals added to the tally, track and field gave us realistic look at just how the competition really is at the Asian Games. It was a session filled with strong efforts, personal achievements and even national records, even if the results did not end with a medal around the neck. Starting with the track events, Pooja lined up in the women's 800 meter final against some of the fastest runners on the continent. She stayed in the mix through the first lap and pushed hard all the way to the finish line, ultimately placing 7th overall with a time of 2:06.72. China's Wu Hongzhou took the gold medal in that race. Over in the men's 800 meter final, Mohammad Afzal was looking to repeat

0: मरी बरकरार है वो शुरू होगा और उसके बाद हम देखते हैं। हालांकि टेनिस में आज का दिन भारत के लिए काफी अच्छा रहा क्योंकि इसके पहले के दोनों एकल और दोनों डबल्स मुकाबले भारत ने जीते।
1: कमिंग टू रेसलिंग, निशा फेसेस नॉर्थ कोरिया स्पार्क सॉय गम इन द वुमेन 68 kg विच इज going to be held tomorrow, and later Sunil Kumar competes in the men's Greco-Roman 87 kilo wrestling.
0: और कल मुकाबला शूटिंग में भी देखने वाला होगा क्योंकि 25 मीटर रैपिड फायर में पुरुषों में अनीश भानवाला भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं ट्रैप मिक्स टीम इवेंट में आज की स्वर्ण पदक विजेता नीरू ढांडा उतरेंगी काइनन चेन्नई के साथ। तो इसके साथ ही हमारा समय समाप्त होता है। कल सुबह ठीक 9:30 बजे हम फिर से हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले आज रात 10 बजे सुनना मत भूलिएगा डेली हाइलाइट्स, जिसमें हम आज के एशियन गेम्स के पूरे दिन का लेखा जोखा आपको देंगे, भारतीय खिलाड़ियों की हर सफलता असफलता की कहानी आपको बताएंगे। तो इसके साथ ही मुझे यानी मुदिता और मेरी साथी प्रेरणा शर्मा को दीजिए इजाजत। कल सुबह ठीक 9:30 बजे फिर से हम हाजिर होंगे।
1: नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति,
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से,
0: सजग भारत
1: जागरूक भारत
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

दोस्तों, अभी आप प्रशांति को सुन रहे थे। नरंग की बज्म अपने आगाज पर है। वक्त हुआ चला है उर्दू प्रोग्राम नरंग का।

0: उर्दू प्रोग्राम नैरंग सुनने वाले हमारे सभी सामाइन को हमारा पुरखुलूस आदाब। आज की बज्म में शामिल है प्रोग्राम की तफसीलात कुछ इस तरह से है। बज्म के आगाज पर पेश किया जाएगा हरफे ताबिंदा। तहरीर व पेशकश होगी मशकूर अहमद की। बेदारी कायनात सिलसिले के तहत तकरीर आप सुन सकेंगे बउनवान अच्छी सेहत। तहरीर व पेशकश होगी जनाब एम ए हाई की। इसके बाद सुरीले गीतों से सजा प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा हम आपको सुनाएंगे, और साथ ही हम बात करेंगे आज के खसूसी मौजू यानी आलमी योम कल्ब वर्ल्ड हेल्थ हार्ट डे पर। और इस तरह बज्म के इख्तिताम पर हम आपको सुनाएंगे पयाम शब। तहरीर व पेशकश होगी जनाब नदीम अख्तर जैदी की। और इस तरह रात 11 बजे हमारी ये नैरंग की बज्म अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। तो आइए बज्म का आगाज करते हैं हज़्ब दस्तूर हरफे ताबिंदा से। तहरीर व पेशकश है मशकूर अहमद की।
1: सामीन, ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है, ऐसा सफ़र जिसमें खुशियाँ भी हैं और आजमाइशें भी। कभी रास्ते आसान लगते हैं और कभी यही रास्ते हमें थका देते हैं, मगर एक चीज़ ऐसी है जो इस पूरे सफ़र को बदल सकती है, और वो है हमारी सोच। जी हाँ, इंसान की सोच ही उसकी ज़िंदगी का रुख मुतय्यन करती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और वैसा ही अमल करते हैं। अगर सोच मुस्बत हो तो अंधेरे रास्तों में भी रोशनी दिखाई देती है, और अगर सोच मनफी हो तो रोशन दिन भी धुंधने लगने लगते हैं। आज के इस दौर में जहां हर तरफ मुकाबला, दबाव और बेचैनी है, मुस्बत सोच की अहमियत और भी बढ़ गई है। ये सिर्फ एक नज़रिया नहीं बल्कि एक ऐसा हुनर है जिसे सीखकर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सामीन, माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि मुस्बत सोच रखने वाले अफराद न सिर्फ ज्यादा कामयाब होते हैं बल्कि वो ज्यादा मुतमईन और पुरसकून जिंदगी भी गुजारते हैं। उनके अंदर मुश्किलात का सामना करने का हौसला ज्यादा होता है और वो जल्द मायूसी का शिकार नहीं होते। हम में से अक्सर लोग एक बड़ी गलती करते हैं, हम खुद का मुवाजना दूसरों से करने लगते हैं। हम दूसरों की कामयाबियां देखते हैं और अपनी कमजोरियां गिनने लगते हैं। यही सोच हमें अंदर ही अंदर कमजोर कर देती है। हकीकत यह है कि हर इंसान अपनी जगह मुनफरिद है। उसके हालात, उसकी सलाहियतें और उसका सफर सब मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए दूसरों से मुकाबला करने के बजाय हमें खुद से बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। सामीन, जिंदगी में नाकामियां आती हैं और आना ही जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन नाकामी का मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें, बल्कि ये हमें सिखाती है, संभालती है और आगे बढ़ने का हौसला देती है। कामयाब लोग वो नहीं होते जिन्हें कभी नाकामी ना मिली हो, बल्कि वो होते हैं जो हर नाकामी के बाद दोबारा उठ खड़े होते हैं। वो जानते हैं कि थोड़ी सी और मेहनत, थोड़ी सी और कोशिश उन्हें कामयाबी के करीब ले जा सकती है। ऐसे ही मुश्किल वक्त में एक और चीज़ जो हमें संभालती है वो है अल्लाह ताला पर भरोसा। जब रास्ते बंद नजर आएं, जब उम्मीदें कमजोर पड़ने लगें, तो यही यकीन इंसान को मजबूत बनाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। हमारी सोहबत भी हमारी सोच पर गहरा असर डालती है। अच्छे मुखलिस

0: और मुस्बत सोच रखने वाले लोग हमारे अंदर उम्मीद और हौसला पैदा करते हैं। उनके साथ रहकर हम खुद को बेहतर महसूस करते हैं। इसके बरक्स मनफी सोच रखने वाले लोग हर बात में कमी और शिकायत तलाश करते हैं। ऐसे लोगों से मुनासिब फासला रखना ही बेहतर है, क्योंकि सोहबत इंसान पर असर जरूर डालती है। सामीन, इसी तरह हमारी गुफ्तगू, हमारे अल्फाज, ये भी हमारी सोच की अक्कासी करते हैं। अगर हम अपनी जबान में मुस्बत अल्फाज इस्तेमाल करें तो न सिर्फ हमारा अपना दिल हल्का होता है, बल्कि दूसरों के दिलों में भी उम्मीद पैदा होती है। मसलन, अगर हम कहें कि ये काम मुश्किल है मगर हो सकता है, तो ये जुमला हौसला देता है। लेकिन अगर हम कहें कि ये काम कभी नहीं हो सकता, तो ये मायूसी पैदा करता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़बान को भी मुस्बत बनाएं। छोटे छोटे जुमले, छोटे छोटे अल्फाज, मगर उनका असर बहुत बड़ा होता है। एक और हम बात, खुश रहने की कोशिश करें। ज़िंदगी में ऐसी मसरूफियात शामिल करें जो आपको खुशी दें। मुस्कुराना सीखें, क्योंकि मुस्कुराहट सिर्फ चेहरे को नहीं बल्कि दिल को भी रोशन कर देती है। सामीन, रोजाना कुछ वक्त ऐसी बातें सुनने, पढ़ने या देखने में गुजारें जो आपके अंदर उम्मीद पैदा करें। अपने जहन को एक खूबसूरत लाइब्रेरी बनाएं जहां मुस्बत ख्यालात महफूज हों। और सबसे अहम बात, खुद पर यकीन रखें। कभी कभी खुद को कम न समझें। आपके अंदर बेशुमार सलाहियतें हैं, बस जरूरत है उन्हें पहचानने और इस्तेमाल करने की। जिंदगी को अगर हम एक टोकरी समझें, तो इसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के फल मौजूद होते हैं। अब ये हम पर है कि हम किसका इंतखाब करते हैं। अगर हम मनफी सोचों को अपनाएंगे तो जिंदगी कड़वी लगेगी, लेकिन अगर हम मुस्बत सोच का इंतखाब करेंगे तो यही जिंदगी खूबसूरत महसूस होने लगेगी। आखिर में बस यही कहना है कि मुस्बत सोच कोई जादू नहीं, लेकिन ये एक ऐसा रास्ता जरूर है जो हमें मुश्किलात से निकलने में मदद देता है। यही हमें मजबूत बनाता है, हौसला देता है और आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो आइए आज से ही अहद करें कि हम अपनी सोच को मुस्बत बनाएंगे, अपने रवैये को बेहतर करेंगे और जिंदगी को एक नए अंदाज से जीने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिंदगी वाकई बदल सकती है अगर सोच बदल जाए।
1: बहुत ही हिकमत और नसीहत की बातें सामाइन अभी आपने समाप्त की कि जी हाँ, बिल्कुल मुस्बित सोच जो होती है वो इंसान को मुश्किल हालात में भी एक हौसला देती है। तो मुस्बित सोच अपनाएं और अपनी जिंदगी खुशहाल और कामयाब बनाएं। तहरीर वो पेशकश थी मशकूर अहमद की।

0: अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही, कंपनियां खोल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोड, फ्लाईओवर और ब्रिज बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीम अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियां हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो।
1: स्टडीज की घड़ी में 9:40 और 6 सेकंड्स हो रहे हैं। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। बज्म को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं बेदारी कायनात सिलसिले के तहत।

तो जैसा कि दोस्तों हम बता रहे थे कि आज हम खुसूसी मौजू यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे उनवान पर बात करेंगे। जी हाँ, हम अक्सर अपनी जो रोज़मर्रा की जिंदगी है उसमें गाड़ियों, मोबाइल फोन्स और घर की जो सफाई का ख्याल होता है बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन जैसे ही जिस्म के उस आज़ा के बारे में हम कभी सोचे हैं जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं, जो बिना रुके 24 घंटे काम करता है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे, समझ भी गए होंगे, हमारा दिल। हर साल 29 सितंबर को दुनिया भर में आलमी योमे कलम मनाया जाता है, ताकि हम सब एक दूसरे को याद दिला सके कि दिल की जो सेहत है वो कितनी जरूरी है। किसी ने क्या खूब कहा है, दिल सलामत है तो धड़कन में रवानी है, दिल सलामत है तो धड़कन में रवानी है, ये नहीं तो फिर खत्म कहानी है। जी हाँ, आजकल की हमारी रोजाना की बातचीत का जो महवर है वो बन चुका है कंप्यूटर, नौकरी का तनाव और फास्ट फूड। हम घंटों एक जगह बैठे रहते हैं, वर्जिश नहीं करते और तली हुई गिजाएं ऐसे शौक से खाते हैं के पूछो ही मत। यही वजह है कि आजकल नौजवानों में भी दिल के दौरे यानी हार्ट अटैक आम होते जा रहे हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो दोस्तों, इस मौजू पर हम और भी दिलचस्प बातें आपसे यूं ही करेंगे। आइए सुनते हैं रूप कुमार राठौड़ की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत, जो कि लिया गया है फिल्म रहना है तेरे दिल में।

अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही, कंपनियां खोल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोड, फ्लाईओवर और ब्रिज बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियां हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेको बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया नहीं तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो।

दाराना जिंदगी से जुड़ा है। आज के इस मशीनी दौर में इंसान ने तरक्की तो बहुत कर ली है, आसमानों को छू लिया है, मगर जमीन पर चलते हुए अपने इस सबसे करीबी और मुखलिस साथी को फरामोश कर दिया है। जरा गौर कीजिए, क्या हमने कभी अपने दिल से पूछा कि उसे हमारी कौन सी आदत तकलीफ दे रही है? पूछा है? नहीं ना। हमारी जो बेख्वाबियां हैं, हमारी जो खुराक है, हमारी जो आदतें हैं, वही इन सब चीजों से मिलकर इस नाजुक से दिल को तबाह कर रही हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इस दर्द की दवा कोई महंगी लेबोरेटरी या किसी बड़े अस्पताल के दरवाजे पर नहीं, बल्कि हमारे अपने तर्ज़े ज़िंदगी में ही पोशीदा है। हमें अपने रोज़ाना की जो ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की जो आदतें हैं, उनमें सुबह की वर्जिश और सैर, इन सब को शामिल करना होगा। अपने दस्तरखान से फास्ट फूड और मसनूई खानों की सल्तनत को ख़त्म करना होगा। गुस्से और चिड़चिड़ेपन की बजाय माफ़ करने और मुस्कुराने की आदत को अपनाना होगा, क्योंकि जो दिल दूसरों के लिए धड़कता है और अंदर से मुतमईन रहता है, वही तवील उम्र और हकीकी सेहत का हकदार बनता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जो बातें हैं आपको समझ में आई होगी। तो इस मौजू पे और भी हम बात करेंगे। आइए सुनते हैं अगला गीत कुमार सानू की आवाज में, जो के लिया गया है फिल्म साथी से।

0: अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही, कंपनियां खोल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोड, फ्लाईओवर और ब्रिज बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियां हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां न को भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया नहीं तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो।
1: दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे वर्ल्ड हार्ट डे मौजू पर, तो बस हम आज के इस दिन पे पुख्ता अजम करेंगे कि हम अपने दिल के साथ साथ अपने मुआशरे के हर फर्द को दिल की बीमारियों से बचाने के लिए बेदारी मुहिम चलाएंगे, यानी उनमें शऊर बेदार करेंगे, अवेयरनेस लाएंगे, और हम ये समझेंगे कि सेहत एक अमानत है और इस अमानत में खयानत करना खुद अपने वजूद के साथ नाइंसाफी है। सुनते हैं अगला गीत कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में।

दोस्तों आइए बज़्म के इख्तिताम से कबल सुनते हैं पयाम शब। तहरीर वो पेशकश है जनाब नदीम अख्तर जैदी की।

इसी खूबसूरत से पयाम के साथ दोस्तों, आज की हमारी ये नैरंग की बज़्म यहीं पर इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद करते हैं आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कल इन्हीं मीटर्स पर रात 9:30 पर आपसे हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर। जय हिंद।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर। स्टूडियोज की घड़ी में 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बारी बारी में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार नश्र किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
2: इंडिया रिजेक्ट्स द अनवारंटेड रेफरेंसेस।
3: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
2: एंड नो एक्सटर्नल पार्टी हैज।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
1: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें दोनों व्यवस्था, एक एमएसपी और एक विदाउट एमएसपी, हम बाजार से कैसे जोड़ दें किसानों को, ये तय किया। तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में 65वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में पुरस्कार पाने वाले 20 कलाकारों को सम्मानित किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन ललित कला अकादमी ने किया। इस मौके पर श्री शेखावत ने रचनात्मकता और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित सेवा ही संस्कृति पहल इसका अच्छा उदाहरण है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में श्रम संवाद नाम से जिला स्तर पर क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एक निजी कानून फर्म के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नियोक्ताओं और उद्योग से जुड़े लोगों को नए श्रम कानूनों के प्रमुख प्रावधानों और उनके पालन से जुड़ी आवश्यकताओं के बारे में जागरूक करना था। नागालैंड में कोहिमा पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए की 7,740 बोतल भारतीय निर्मित विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने आज जारी एक बयान में बताया कि यह खेप कल दोपहर जुब्बा थाना क्षेत्र में नियमित जांच के दौरान एक ट्रांसपोर्ट वाहन से पकड़ी गई। पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच जारी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली है। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Defense Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amid challenges arising from evolving technology, unpredictability, and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi today, Mr. Singh said the country's goal is clear, that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. The minister underlined that the ongoing Operation Urja Suraksha has once again demonstrated the Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interests. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said the government is working on a multidimensional strategy to ensure that farmers receive fair and remunerative prices for their produce. The strategy includes strengthening post-harvest management, scientific warehousing and marketing systems. Addressing the second day of the National Agriculture Conference, Rabi Campaign 2026 in New Delhi today,

0: Good evening and welcome to Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goel.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर आज चर्चा करेंगे. चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा. डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: जी शुक्रिया, थैंक यू.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ राजेश.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स नियरली 250 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 22,716. India is working to become world's third largest aviation market, says Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu. And global crude oil prices decline.

0: 1%.
1: आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स लगभग 250 अंक लुढ़का, निफ्टी 22,716 के स्तर पर दर्ज. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रामोन नायडू ने कहा कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने का प्रयास कर रहा है. और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 1% से अधिक की गिरावट.

0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर. लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट दर्ज हुई. मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 243 अंक गिरकर 72,529 के स्तर पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% के नुकसान से 64 अंक गिरकर 22,716 के स्तर पर बंद हुआ. एनएसई मिड कैप सूचकांक में 1% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.8% की गिरावट रही. वैश्विक बाजारों के कमजोर संकेतों से कारोबार की शुरुआत में से ही आज दबाव रहा. दोपहर बाद बाजार में कुछ सुधार के बावजूद सूचकांक लगभग 6 महीनों के निचले स्तर पर दर्ज हुए.
0: Benchmark domestic equity indices declined for the second consecutive session today. The Sensex lost 243 points or 0.33% to close at 72,529. The Nifty fell 64 points or 0.28% to settle at 22,716. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index shed 1%, while the small-cap 100 index dropped 0.8%. Markets opened lower this morning, tracking weak global cues. In the first hour of trade, benchmark indices touched the day's low before staging a reversal. Despite a moderation in losses during the afternoon session, the benchmark indices closed near their six-month lows, as persistent global and domestic headwinds along with pressure related to the monthly Nifty Futures and Options FNO expiry, continued to weigh on market sentiment.
1: सेंसेक्स पैक की 30 में से 18 कंपनियों में आज गिरावट रही. गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में टाइटन 2.7%, एचसीएल टेक 2.3% और टीसीएल 1.7% के नुकसान से बंद हुए. हालांकि अडानी पोर्ट 4.4%, सन फार्मा 1.1% के साथ साथ टाटा स्टील और कोटक बैंक 1% की बढ़त बनाने में कामयाब भी रहे.
0: इन दी सेक्टोरल इंडेक्सेस ऑन द बीएसई 21 आउट ऑफ 28 सेक्टर्स एज्ड लोअर. Among the top laggards, consumer durables skidded 2%, focused IT lost 1.8%, and insurance dropped 1.6%. In contrast, services gained 1.5%, telecommunications rose 1.3%, and metal added 0.9%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,462 companies declined, 1,925 advanced and 209 remained unchanged.
1: अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 95.99 प्रति डॉलर के पूर्व स्तर पर बरकरार दर्ज हुआ. डॉक्टर शर्मा, किस तरह से देखते हैं बाजार की दिशा को? बाजार में कहां कुछ घबराहट सी थी जो बाजार वैश्विक परिदृश्य में कहीं तो बिकवाली के दबाव में रहा. आज लगभग एक बार उसने आज दिन के अपने निचले स्तर को भी छुआ. हालांकि बाद में थोड़ा सा सुधार तो हुआ, लेकिन ओवरऑल आज टोटल माने तो बाजार में गिरावट ही हावी रही.
2: जी बिल्कुल, बाजार काफी वीक था आज और कारण यही है कि वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है वो अभी किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है. तो उसका जो उम्मीदें थी कि शायद कुछ ट्रंप में और ईरान में बात होगी, शायद ट्रंप साहब कोई डिसीजन लेंगे, पीस वार्ता शुरू होगी या फिर हॉर्मुज को खोलने की बात होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आ रहा है. और दूसरे नंबर पे जो एक यूएस ट्रेजरी बिल जो है, जो उसका जो बॉन्ड यील्ड है वो राइज कर रहे हैं, जो कि इमर्जिंग मार्केट्स के लिए

0: फिर कैपिटल फ्लोज के लिए अच्छे नहीं है। और तीसरे नंबर पे जो डॉलर स्ट्रांग हुआ है पिछले कुछ दिनों में, वो भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो क्रूड ऑयल तो बहुत ही अभी
1: चिंता का सबब
0: ऊपर
1: बना
0: की
1: हुआ है।
0: चिंता का कारण तो है ही है। और पहले क्या होता था कि वॉलीटिलिटी आती थी, एक बार प्राइसेस ऊपर जाके फिर वापस करेक्शन लेके कुछ ऐसी न्यूज़ पॉजिटिव आ जाती थी कि करेक्शन हो गई है, कि अभी कुछ शांति वार्ता की बात होने लगी है, तो प्राइसेस एकदम से करेक्ट होते थे। लेकिन अभी वो भी नहीं हो रहा है। अभी प्राइसेस ऊपर जाके 105, 106, 107 के आसपास सेटल हो रहे हैं, वहीं पे ऊपर नीचे थोड़ी वॉलेटाइल है। बट जैसे पहले एक बड़ी करेक्शन आ जाती थी जब प्राइसेस ऊपर जाए, वो नहीं हो रहा है। तो अगर ये ऐसे ही स्टेबल रहते हैं इस लेवल पे जाके, तो काफ़ी मतलब एक वरिंग फैक्टर है, खास करके हमारे लिए भी, क्योंकि हम बहुत बड़े इम्पोर्टर हैं क्रूड के। और जो जैसे आपने बात की कि मार्केट्स में पहले काफ़ी नेगेटिव था, डिसेलरेशन थी, उसके बाद मार्केट्स रिकवर भी हुई, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि आज एक तो एक्सपायरी डे था डेरिवेटिव्स में, ऑप्शंस में एक्सपायरी डे था, तो जो शॉर्ट कवरिंग्स थी, काफ़ी जो ट्रेडर हैं उन्होंने अपनी रिकवरी पोजीशंस, जब मार्केट एक लेवल पे जाके और डिसेलरेट नहीं हो रही है, एक लेवल पे आ गई है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस भी बना है। अभी मार्केट काफ़ी लो पे है, जो जैसे आपने बताया कि 2-3 साल के लो स्तर पे मार्केट है,
1: लगभग तो 6 महीनों के स्तर पे,
0: अभी अभी तो 6 महीनों के स्तर पे है, और जैसे पहले 23,000 के आसपास कंसोलिडेट कर रही थी, लेकिन अभी 23,000 से भी नीचे है मार्केट। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तो बाइंग आ जाती है, क्योंकि ऐसा एक बाइंग एडवांटेज भी आता है इन्वेस्टर के पास, क्योंकि मार्केट के फंडामेंटल तो स्ट्रांग है। ये जो भी ग्लोबल हेडविंड्स है, उसी की वजह से जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसी की वजह से। अदरवाइज इंडिया के
2: How do you view the stock exchanges which once they have introduced the closing auction session CAS, which was introduced in August? Typically markets are heightened volatility on monthly expiry days. However, CAS has led to such wild swings, which you notice today as well in the benchmark indices, and that too at the fag end of the sessions. How do you react to the CAS bringing about such volatility in the market?
0: Yes, I agree that at the closing time, some volatility exists in the
2: within 2 seconds it happens.
0: Yes, in the cash market and in the options also. But otherwise, I believe there is some stability during the day session. When you are in the mid of the day, then the stability is also there. But at the closing time, some volatility happens in the last 10-15 minutes. So I think that is majorly retailers are not investing in the options, so that's why I think they are not impacted. But in the trading segment, this is a worrying factor. And some SEBI is also taking measures to resolve it, and I believe there will be some plausible solutions in the coming times.
2: A consultation paper is available till 3rd October.
0: Yes,
2: okay.
0: Yes.
2: Also, the Indian benchmarks have now logged one of the longest weekly losing streaks in years. How much of this fall is domestic because of earnings, valuations, FPI flows versus external, which you mentioned also, oil, US yields, global risk off, etc.?
0: Yes, I believe this is majorly because of the international factors, because our fundamentals are strong, very, very strong, because now we are very good in the IIP numbers. Our GDP numbers are 7.8%. Though inflation worries are there, that too because of the international factors, as WPI is significantly increased to the level of more than 9%, and that is also passing through to the CPI. Overall, the other growth indicators, whether the exports are growing 17-18% in the merchandise segment, and IIP numbers, core infrastructure, all are steady and growing significantly. But at the global level, the such kind of the news like crude prices are going up and there is no sign of discussion between Iran and US, and again the treasury 10-year treasury bill yield are high and dollar is again strengthening and the US has increased the Fed rate. So all these are the negative factors.

0: for the financial markets. That's why the global volatility impact the markets in emerging Asia, like India is impacted by such volatility. So, but domestically, I think there is no bad news from any segment.
1: अभी थोड़े दिन बाद ही बाजार में दूसरी तिमाही के नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे और आमतौर पे बाजार तिमाही नतीजों को पहले से ही भांप लेता है, महसूस कर लेता है,
2: फैक्टर इन कर लेता है
1: जी. क्या बाजार अभी भी उन ट्रिगर्स से कहीं उत्साहित होता हुआ नजर नहीं आ रहा, या ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि उनके नतीजों को बाजार उससे उत्साहित नहीं है?
0: देखिए, नतीजों में क्या होता है कि उससे पहले मार्केट्स इतनी डाउनसाइड या इतनी डिसेलरेशन नहीं लेती हैं, थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी होती है. लेकिन ये जो मेजर इम्पैक्ट आता है, जो डिसेलरेशन है, जो अभी हम कुछ पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि मार्केट में एक बहुत अनएक्सपेक्टेड फॉल आया, जो मार्केट्स पहले कंसोलिडेट कर रही थी समवेयर बिटवीन 23,000-23,500, बट नाउ मार्केट्स डिसेलरेट बिलो 23,000. बट बिकॉज ऑफ दी
1: 23,000 के स्तर से नीचे अगर आता है तो क्या ये चिंता का सबब है या ये अवसर का समय है?
0: देखिए, मैं तो इसको अवसर का
2: आज 22
0: अवर मैं तो इसको अवसर का मौका मानूंगा, अवसर मानूंगा, क्योंकि अब आप 23,000 के नीचे हैं तो मार्केट का जो वैल्यूएशन है, आई बिलीव दैट इज वेरी लुक्रेटिव नाउ. आपको जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए मार्केट इज वेरी गुड, आई वुड से, बिकॉज एक ना एक दिन तो यूएस और ईरान में पीस होगा, सीज फायर होगा दोनों,
1: बट उसके पहले कितना नुकसान
0: हो चुका है, पहले कितना नुकसान होगा वो मार्केट्स ऑलरेडी उसको फैक्टर इन कर चुके हैं.
1: अगले सप्ताह मौद्रिक नीति भी आनी है रिजर्व बैंक की, तो वो कैसे प्रभावित होगी?
2: डॉक्टर शर्मा, एज माय कॉलीग सेड, आरबीआई एमपीसी पॉलिसी इज नेक्स्ट वीक, सो आर वी सीइंग डीरेटिंग ऑफ इंडियन इक्विटीज after years of premium valuations, which you also just pointed out, or is this mainly a liquidity and risk premium story?
0: I think this is the story of the uncertainty, actually, mm-hmm. at the global level. That is impacting the market sentiment. Otherwise, markets hold a strong potential to bounce back. If some now let's see some good talks or the peace talk starts between US and Iran tomorrow, then the markets will strongly bounce to the
2: sentiments
0: will improve. So I believe this is the story of sentiments and the volatility at the global level, but market pillars like markets are growing, or the economic sentiment or the business sentiment is based on the four major things, like the demand trajectory, second the stability in the repo rate during the last many quarters, and the efforts of the trade and industry, and last the hand holding provided by the government, many reforms undertaken by the government during the last many years, and particularly during the West Asia crisis during the months of March, April, May. So these are supporting the sentiment of the investors, but at the global level the uncertainty again impacts the sentiments during the some such kind of volatility.
2: Moving on, 17 of the 19 subsectors under the Index of Services Production, ISP, recorded year-on-year expansion in July 2026, with the 10 posting double-digit growth. According to the subsectoral trial ISP data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI, today, administrative and support services led the pack with growth of 20.9%, followed by retail trade at 18.5%. Real estate rose 14.4%, accommodation and food advanced 12.6%, and banking registered 12.3% annual growth. Index of Services Production tracks short-term changes in the volume of output produced by the formal services sector relative to a specified base year. MOSPI said that the monthly ISPs are being published on trial basis to assess data quality and coverage. Very quick comment on 20.9%.
0: As I mentioned, that fundamentals are very, very strong, and services, these are creating a great breakthrough in the economy, as their contribution is also more than 55%. So these are indicating that the growth trajectory will remain intact in the coming times, and

0: we will grow and the growth will remain resilient in the coming quarters.
1: भारत और 19 अन्य देशों से आयात होने वाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विशेष दवाओं और उनके संबंधित घटकों पर अमरीका कोई शुल्क नहीं लगाएगा. अमरीका 29 सितंबर से कुछ पेटेंट दवाओं और उनके संबंधित घटकों के आयात पर 100% शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है. बहुत संक्षेप में ये खबर आमतौर पर कितनी उम्मीदें जगाती है?
0: देखिए, ये एक हमारा बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर है, तो उम्मीदें तो बहुत जगाती है कि एक बहुत ही अनसर्टेनिटीज में एक आपको एक बड़ी आशा की किरण दिखाई दे तो उम्मीद आ जाए तो लगता है कि और भी चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं.
2: Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu has said that India is emerging as a major global aviation hub and working towards becoming the world's third largest aviation market. Addressing the Curtain Raiser press conference on Routes Asia 2027 in New Delhi today, Mr. Naidu said that India aims to increase the number of passengers sixfold from around 24 crore currently to 130 crore by 2047. The minister highlighted that the number of operational airports in the country has increased from 74 in 2014 to more than 166 currently.
3: We have expanded the airport network in the country, and the next step for us is to improve the connectivity. Today we have a lot of Indian diaspora which is staying outside, and we also have big trust in the Indian ecosystem today in terms of having trade with our country, manufacturing and supply chain ecosystems in our country. All that begins with better connectivity. So that is why not only at Global South but also the bigger part of Asia and the rest of the world, we want to offer direct and more importantly better connectivity with the world. So our focus for Route 2027 is going to be to engage with airlines, to engage with the countries, to see how do we unlock the connectivity opportunity that we have.
2: Sharma, Minister said that India aims to increase the number of passengers sixfold from 24 crore to 130 crore by 2047. And that's very good news.
0: Yes, and that's true. Actually, we are growing significantly, and our objective is to become Viksit Bharat by 2047. And as Honorable Minister rightly said, that connectivity is very, very important when you are growing significantly, you are robust and you are becoming more and more strong and participating more in the global growth trajectory. So I think this is a great step towards increasing the connectivity, and like we have signed the many free trade agreements. So now we need the more and more connectivity, not only for the businesses, but for the people also. As they go there and find the opportunities and connect with the people, people to people exchanges.
2: And it works very well as part of ease of doing business.
0: Right.
1: भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की. दोहा में सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया. उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरा होने का स्वागत किया. इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है. श्रीमती सीतारमन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की. डॉक्टर शर्मा, भारत और सऊदी अरब मिडिल ईस्ट का एक प्रमुख देश है सऊदी अरब. अगर वहां से हमारे संबंध मजबूत होते हैं तो ये हमारे व्यापारिक अवसरों के साथ साथ हमारी ऊर्जा जरूरतों के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्रिटीज हैं. हम जो है वो एनर्जी इम्पोर्ट करते हैं, हम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, वो हमें सऊदी अरब से बहुत अच्छे से हमें मिल सकता है, और उनको फूड की जरूरत है. लाइक वी आर अ ग्रेट प्रोड्यूसर ऑफ द फूड ग्रेन एंड अवर एग्रीकल्चर, वी आर स्टिल एंड अ ग्रेट एग्रीरियन इकोनॉमी. So we can capitalize such opportunities in such friendly countries where there is lot of scope to enhance the trade trajectory and to become more and more robust in the bilateral trade. Like this is a great give and take, great efficiency in the give and take, that we are importing the oil or energy and we are exporting the food for them. So that is my thought actually.
2: The new Merchant Discount Trade MDR framework will come into effect from 15th of next month. Under this framework, Unified Payment Interface UPI transactions of up to 2,000 rupees will attract zero MDR. National Payments Corporation of India has

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मन में आपके लिए स्वागत करती हूँ मैं कुसुम। पहला गीत फिल्म भीगी रात से मोहम्मद रफी की आवाज में आपके लिए।

लैला मजनू फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। और आइए अब सुनते हैं नागिन फिल्म का गीत, आवाजें हैं लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की।

0: फिल्म गोरा और काला केसी गीत के साथ ही गीत मेरे मन में यहीं तक। कुसुम को दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में इस चैनल पर आपके लिए होंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
2: India rejects the unwarranted references.
3: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
2: And no external party has any locus standi on this issue.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित करते हुए ये बात कही। भूमि संसाधन विभाग ने कल नई दिल्ली में नदियों के पुनर्जीवन पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में नदी क्षेत्रों के विकास और जल संरक्षण के लिए जल ग्रहण क्षेत्र के विकास के जरिए प्रस्तावित पायलट परियोजनाओं पर चर्चा हुई। भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेंद्र भूषण ने कहा कि नदियों को फिर से जीवंत करने के लिए उन क्षेत्रों का भी विकास जरूरी है जहां से नदियों में पानी पहुंचता है। निर्वाचन आयोग ने कल दिल्ली के अलग अलग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष शिविर लगाए। इन शिविरों का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना है। आयोग के अनुसार बड़ी संख्या में छात्रों ने शिविरों में पहुंचकर एसआईआर और फॉर्म लेने या जमा करने से जुड़ी जानकारी ली। आयोग ने बताया कि अगले दौर के विशेष शिविर 7 और 8 अक्टूबर को लगाए जाएंगे। आयोग ने युवाओं से इन शिविरों का लाभ उठाकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अपील की। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नातुंग ने असम अरुणाचल प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दोनों राज्यों की 12 क्षेत्रीय समितियों की संयुक्त मैदानी यात्राओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने सभी समिति अध्यक्षों से असम के अपने समकक्षों के साथ मिलकर मैदानी दौरे जल्द पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि बातचीत और आपसी समझ के साथ सीमा से जुड़े मुद्दों का जल्द और आपसी सहमति से समाधान किया जाना चाहिए। भारत की स्पिन गेंदबाजी श्रीचरणी ने आईसीसी महिला टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में नया रिकॉर्ड बनाया है। श्रीचरणी ने 817 रेटिंग अंक हासिल किए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेगन शूट का रिकॉर्ड तोड़ा है। वहीं ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा भी टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में आगे बढ़ी है। एशियाई खेलों के फाइनल में 3 विकेट लेने के बाद उनकी रेटिंग 754 अंक हो गई है। इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन 723 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना महिला टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में फिर से शीर्ष 5 में शामिल हो गई हैं। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों केरला माहे कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा तमिलनाडु पुडुचेरी और कराईकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Renuka. Defense Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amidst challenges arising from evolving technology, unpredictability, and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi yesterday, Mr. Singh said the country's goal is clear that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. The minister underlined that the ongoing Operation Urja Suraksha has once again demonstrated the Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interests. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said the government is working on a multidimensional strategy to ensure that farmers receive fair and remunerative prices for their produce. The strategy includes strengthening post-harvest management, scientific warehousing and marketing systems. Addressing the second day of the National Agriculture Conference, Rabi Campaign 2026 in New Delhi yesterday, Mr. Chauhan assured 100% government procurement of Tur, Urad and Masoor at minimum support price. The minister said,
5: "It is our collective responsibility to ensure that farmers get a fair price for their produce. We need to connect farmers with the market through both systems, with MSP and without MSP. It has been decided that the government will purchase 100% of Tur, Masoor and Urad. However, whether it is a Kharif or a Rabi crop, the procurement arrangement should be made properly in advance so that farmers receive payment within 48 days.

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 59 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर निशिगंधा, मैं हूँ राखी आपके साथ।

आराधना फिल्म का गाना आपने सुना, रफी और आशा भोसले की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। रात गहराती जा रही है, शहर की रफ्तार थमने लगी है और ऐसे में दिल को चाहिए बस थोड़ा सा सुकून, कुछ मीठी यादें और कुछ सदाबहार नगमे।

दो रास्ते फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी खूबसूरती पर नजर ठहर जाए तो वक्त जैसे वहीं रुक जाता है। कभी उनकी जुल्फों की नरमी दिल को छू जाती है तो कभी आंखों की गहराई अपने आप कोई कहानी कह जाती है। और जब बात हो ऐसी दिलकश अदाओं की तो क्या ही कहने।

मोहब्बत भी कितनी अजीब है, मिलने की तमन्ना भी रहती है और जब सामने वो आ जाए तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और आंखें शर्म से झुक जाती हैं। यही तो है मासूम मोहब्बत की उलझन। हीर रांझा फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

शायद मोहब्बत की कुछ कहानियां पूरी होकर नहीं, अधूरी रहकर ही दिल में जिंदा रहती हैं। महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना आपने सुना, रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वक्त हुआ है 12:34 और ठीक 7 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूँ राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

जब इश्क हद से गुजर जाए तो दिल को ना दुनिया की परवाह रहती है ना किसी अंजाम का डर। बस एक इल्तिजा रह जाती है कि इस दीवानी को उसकी मोहब्बत की सजा भले मिले मगर उसके दीवाने को पत्थर से कोई ना मारे। आपने सुना लैला मजनू फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज में, साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

इश्क में शिकायत भी हो, उलहना भी हो और दिल की हार भी, तो अंदाज कुछ ऐसा ही हो जाता है। सामने वाला बेपरवाह निकला, मगर दिल फिर भी उसी पर आ गया। प्यार में शायद यही सबसे बड़ी विडंबना है कि जिसे दिल का अपना नजदीकी समझा, वही कभी कभी दिल का दुश्मन बन बैठा। आपने सुना कालीचरण फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में।

0: इंसानी रिश्तों की दुनिया भी बड़ी अजीब है। यहाँ चेहरे वही रहते हैं, मगर वक्त और हालात के साथ उनके रंग बदलते दिखाई देते हैं। कोई पल भर में अपना बन जाता है, तो कोई अपनी असलियत छुपाकर कई चेहरे ओढ़ लेता है। और शायद इसीलिए कुछ लोग जब चाहें अपने लिए एक नई दुनिया बसा लेते हैं। दाग फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: यूं ही तुम

सच्चा झूठा फिल्म का गाना आपने सुना रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। वक्त हुआ है 12:55 और ठीक 16 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: इंडिया रिजेक्ट्स द अनवारंटेड रेफरेंसेस।
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकस स्टैंडाई ऑन दिस इशू।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान नक्सलवाद, नस्ली भेदभाव, विदेशी लोगों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता दोहराई थी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को

0: मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित करते हुए ये बात कही। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कल एक नई कृषि पहल की शुरुआत हुई। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लद्दाख में उगाए गए लीलियम फूलों की पहली व्यावसायिक एयर कार्गो खेप को रवाना किया। इस मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि यह लद्दाख के कृषि क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि ठंडे रेगिस्तान के रूप में पहचाने जाने वाले लद्दाख में अब भी फूलों की खेती सफल हो रही है। प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की पहल पर फूलों की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। देश के कई हिस्सों, खासकर पश्चिम नेपाल में लोगों को भारी नुकसान के बीच अपने घरों और बस्तियों में लौटने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिमी नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार म्याग्दी में 200 से ज्यादा परिवार विस्थापित हुए हैं। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों केरलम, माहे, कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों और ओडिशा में भी ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है। पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था। पहले मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल ने शतक लगाए थे। जापान एशियाई खेलों में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली है। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Defense Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amidst challenges arising from evolving technology, unpredictability and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi yesterday, Mr. Singh said, "The country's goal is clear that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep." The minister underlined that the ongoing operation Urja Suraksha has once again demonstrated that Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interests. India has reaffirmed its commitment to the goal of a nuclear weapons-free world and the complete elimination of nuclear weapons. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, delivered India's statement at the high-level plenary meeting to commemorate the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons at the UN headquarters in New York. Secretary George affirmed India's unwavering commitment to combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance at the high-level meeting on the 25th anniversary of the adoption of the Durban Declaration and Programme of Action, DDPA, at the ongoing UNGA. Last week, Secretary George highlighted the need for stronger international cooperation to return cultural properties during a high-level side event at the UNGA. The Ministry of Social Justice and Empowerment will organize a Safai Mitra Suraksha Evam Samman Shivir in New Delhi today as part of the ongoing Swachhata Hi Seva SHS 2026 campaign. Being organized under the theme is Samman Safai Mitro Ka Sankalp Swachh Bharat Ka. The Shivir aims to recognize and honor the vital contribution of Safai Mitras and facilitate their access to health, safety and social protection measures. The program will be organized in hybrid mode. The physical event will be in New Delhi, while urban local bodies, rural local bodies and line departments from across the country will participate virtually. Minister of State for Social Justice and Empowerment, P.L. Verma, and Delhi Chief Minister, Rekha Gupta, will attend the event. The Swachhata Hi Seva 2022 campaign is being observed.

वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 1 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

कभी कोई धुन कानों से होकर सीधे दिल तक पहुंचती है, तो कभी किसी गीत के बोल बरसों पुरानी तस्वीर आंखों के सामने ले आते हैं। फिल्मी संगीत की यही खूबसूरती है, वक्त बदलता रहता है लेकिन अच्छे गीत अपनी जगह बनाए रखते हैं। तो आइए आज की इस खूबसूरत महफिल में कुछ ऐसे ही नगमों का साथ हो जिनमें है मिठास, यादों की गर्माहट और सुनने का एक अलग ही सुकून। अभी आपने सुना था भाभी फिल्म का गाना, रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने।

वक्त थोड़ा सा मगर एहसास इतना गहरा कि जमाना भी दूर नजर आने लगा। इसी खूबसूरत एहसास को आवाज दी इस नगमे ने। गेटवे ऑफ इंडिया से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और रफी की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

प्यार अगर दिल में गहराई से उतर जाए तो फिर चैन भी उसी का, बेचैनी भी उसी की। इंतजार में बीतती रातें और किसी की याद में ठहरते पल, जैसे दिल को आराम करना ही नहीं, मोहब्बत में डूबे दिल की यही तो दास्तान है। आपने सुना जेलर फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

जिंदगी की असली खूबसूरती शायद उसी पल महसूस होती है जब इंसान किसी को अपना मानकर उसके सुख दुख में शामिल हो जाता है। मोहब्बत में खुद को भुला देना, किसी किसी की खुशी को अपनी खुशी समझ लेना, यही तो प्यार का सबसे खूबसूरत रंग है। और जब दिल सचमुच किसी का हो जाए तो फिर जिंदगी की हर राह उसी के नाम से जुड़ी हुई लगती है। अनारकली फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

मोहब्बत सिर्फ कह देने का नाम नहीं, इसे महसूस करना पड़ता है, कभी भरोसे में, कभी इंतजार में। शायद इसीलिए दिल कहता है, एक बार इस मोहब्बत को परख कर तो देखिए, हो सकता है इस एहसास में आपको वो सुकून मिल जाए। बाबर फिल्म का गाना आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने।

कभी कभी दिल में दबे जज्बात इतने गहरे हो जाते हैं कि आंखें खामोश रहें मगर दिल खुद अपनी कहानी कहने लगता है। बिछड़ने का दर्द हो या किसी अपने की याद, कुछ एहसास आंसुओं के रास्ते बाहर आते हैं। आ फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

वक्त हुआ है 1:47 और ठीक 22 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे

इस गीत में प्यार की मासूम हैरानी है और एक मीठी सी शिकायत भी। आखिर कोई किसी पर इतना फिदा क्यों हो जाए और दिल को खबर भी ना हो कि मोहब्बत कब और कैसे हो गई। सोने की चिड़िया फिल्म का गाना आपने सुना, आशा भोसले और तलत महमूद की आवाज में, साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने।

दिल ही तो है फिल्म से आपने ये गीत सुना, मुकेश की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। वक्त हुआ है 1:54 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: इंडिया रिजेक्ट्स द अनवारंटेड रेफरेंसेस।
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकस स्टैंडाई ऑन दिस इशू।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सेवी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान नस्लवाद, नस्ली भेदभाव, विदेशी लोगों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का संकल्प स्वच्छ भारत का थीम पर आयोजित इस शिविर का मकसद सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है, साथ ही उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा उपायों तक पहुंचने में मदद करना है। देश भर से शहरी, स्थानीय निकाय, ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने जायरोप्लेन के लिए पायलट लाइसेंस जारी करने से संबंधित नया सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट CAR जारी किया है।

जैरोप्लेन के पायलट लाइसेंस के लिए ग्राउंड और फ्लाइंग ट्रेनिंग सिलेबस नामक इस सीएआर में डीजीसीए से जैरोप्लेन श्रेणी का पायलट लाइसेंस हासिल करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए जमीनी और उड़ान प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। देश के कई हिस्सों खासकर पश्चिम नेपाल में लोगों को भारी नुकसान के बीच अपने घरों और बस्तियों में लौटने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिमी नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली। नदी के तेज बहाव के कारण 50 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार म्यागदी में 200 से ज्यादा परिवार विस्थापित हुए हैं। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों केरला माहे कराईकल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा तमिलनाडु पुडुचेरी और कराईकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था। पहले मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल ने शतक लगाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 57 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई। मैं हूँ राखी आपके साथ।

तेरी मेहरबानियां फिल्म का गाना आपने सुना, अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार की आवाज में। SH बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। रात सुरमई हो, हवाओं में हल्की सी ठंडक हो और चारों ओर दिन भर की भागदौड़ के बाद एक सुकून उतर आया हो, ऐसे में पुराने फिल्मी गीतों की मिठास इस रात को

और भी खूबसूरत बना देती है। आइए इस सुरमई रात में यादों के कुछ पन्ने पलटें और उन नगमों का को साथ लें जो कभी दिल के बहुत करीब थे और आज भी सुनते ही वही एहसास जगा देते हैं।

क्या खूब बात कही है। सुकून ना सोने में है ना चांदी में, असली चैन तो उस अपने के साथ में है जिसके होने से

जिंदगी में प्यार और अपनापन महसूस होता है। धन दौलत अपनी जगह, लेकिन दिल को ठहराव और चेहरे पर मुस्कान अक्सर किसी अपने के साथ से ही मिलती है। साहिब फिल्म का गाना आपने सुना, एस जानकी और बप्पी लाहिड़ी की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने।

वो सात दिन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वक्त हुआ है 2:31 और ठीक 40 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

प्यार में डर कैसा? जब दिल किसी के नाम हो जाए तो फिर दुनिया की परवाह कहाँ रहती है? मोहब्बत करने वाले अपने एहसास को छुपाते नहीं, बल्कि पूरे यकीन के साथ उसे जीते हैं। और शायद इसी जज्बे को इस खूबसूरत गीत ने अपनी खुशबू से नवाजा। जी हाँ, हीरो फिल्म से आपने ये गीत सुना मनहर उदास और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया

कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिंदगी में लोग आते जाते रहते हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन किसी एक की याद दिल में ऐसी जगह बना लेती है कि फिर वही हर वक्त याद आने लगता है। वक्त चाहे कोई भी हो, हालात कैसे भी हो, दिल बस उसी को ढूंढता है। सिंदूर फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मोहब्बत में कभी दिल घबराकर किसी के हवाले हो जाता है तो कभी वही दिल इंतजार और बेचैनी में तड़पने लगता है। इश्क का यही तो रंग है, जहां एक दिल अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और दूसरा उसी मोहब्बत की कसक को महसूस कराता है। जमीन आसमान फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 2:51 और ठीक 46 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमरा ही प्रोग्राम आप सुनेंगे अर्चना सचदेवा के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

टूटे खिलौने फिल्म का गाना आपने सुना यीशुदास की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। वक्त हुआ है 2:58 और ठीक 41 सेकंड। अब से बस कुछ ही देर में

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियां और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: India rejects the unwarranted references.
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: And no external party has any locus standi on this issue.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों की पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान नस्लवाद, नस्ली भेदभाव, विदेशी लोगों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता दोहराई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का संकल्प स्वच्छ भारत का थीम पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास ने आज कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरा है। भारत और उभरती आर्थिक व्यवस्था मंच के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री दास ने बताया कि 2021-22 से 2025-26 के दौरान भारत ने औसतन 7.9% की वार्षिक वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर्ज की है। श्री दास ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। इस संबंध में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्यभर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी का 8वां

रात के 3:11 और 16 सेकंड हुए हैं। हमराही कार्यक्रम लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं मैं, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों, मोहब्बत में रूठना और मनाना ये सिलसिला चलता ही रहता है। रूठना एक तूफान की तरह होता है जो सब कुछ बिखेर देता है, और मनाना उस ठंडी हवा जैसा जो फिजा को महका देता है। जब से है वो खफा खफा तो हर पल उदास है, जब से है वो खफा खफा तो हर पल उदास है। वे यह नहीं जानते कि उन्हीं से तो हमारे जीवन में उल्लास है।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म शागिर्द से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, खफा होना और फिर मान जाना और फिर कसम भी ले लेना कि आगे से अब कभी नहीं रूठेंगे, पर ये कसम कब तक टिकती है वो कुछ पता नहीं। कसम खाना तो आसान है दोस्तों, पर उस कसम पर टिके रहना बहुत ही मुश्किल होता है।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म तेरे मेरे सपने से अभी आपने गीत सुना। जन्मों जन्म का साथ है अपना, ये बात दिल से मान लो। जन्मों जन्म का साथ है अपना, ये बात दिल से मान लो। इस रूह के बंधन को तुम भी अपनी किस्मत जान लो।

नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म त्रिशूल से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं, जौहर महमूद इन गोवा फिल्म से सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाज में।

संभलने की कोशिश तो बहुत की मैंने ए दिल, संभलने की कोशिश तो बहुत की मैंने ए दिल, मगर तुम्हारी याद आई और मन फिर बहक गया। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में आइए सुनते हैं उत्सव फिल्म से ये गीत।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में फिल्म कश्मीर की कली से अभी आपने गीत सुना। तपस सूरज में होती है, जलना जमीन को पड़ता है। तपस सूरज में होती है, जलना जमीन को पड़ता है। मोहब्बत निगाहें करती हैं, धड़कना दिल को पड़ता है।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म अप्रैल फूल से अभी आपने गीत सुना। कुछ अनकही सी बात कह जाती हैं ये आंखें, कुछ अनकही सी बात कह जाती हैं ये आंखें, बिन बोले ही सारा जहां कह जाती हैं ये आंखें। झुकी तो इकरार बन गई, उठी तो सवाल, जाने कितनों के दिलों पर वार कर जाती हैं ये आंखें।

मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में फिल्म सीआईडी से अभी आपने गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म लव स्टोरी से।

दोस्तों, अब हमारा भी जाने का वक्त हो चला है और हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: India rejects the unwarranted references.
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: And no external party has any locus standi on this issue.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों की पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान नस्लवाद, नस्ली भेदभाव, विदेशी लोगों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत आज सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का संकल्प स्वच्छ भारत का थीम पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। इस संग्रह में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्यभर की प्रमुख अवसंरचना परियोजना के मॉडल शामिल हैं। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी का 8वां संस्करण 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिमी नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली है। नदी के तेज बहाव के कारण 50 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार म्यागदी में 200 से ज्यादा परिवार विस्थापित हुए हैं। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों, केरलम, माहे, कराईकल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था। पहले मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल ने शतक लगाए थे। जापान एशियाई खेलों में भारत ने 2

सुबह के 4:11 और 12 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का सुबह की सुहानी बेला में स्वागत है। दोस्तों, एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है, एक नए उत्साह के साथ हम सुबह उठते हैं और दुनिया भी हमेशा नई ही दिखाई देती है। दोस्तों, बहारें हमेशा आती जाती रहेंगी, पर आप अगर सच्चे और अच्छे मन से देखोगे तो दुनिया हमेशा नई ही दिखेगी।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म कस्मे वादे से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, मुस्कुराहट का सही अर्थ एक बच्चा ही बता सकता है। बड़े लोगों की मुस्कुराहट में तो काफी अर्थ होते हैं, और जो हर हाल में मुस्कुराना सीख जाता है वो धरती का सबसे सुखी इंसान बन जाता है।

0: धड़क ने लगे दिल के तारों की दुनिया,
1: सबर जाए हम बेकरारों की दुनिया,
0: जो तू

आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म धूल का फूल से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी एक खेल है, यहां कोई पास हो जाता है तो कोई फेल, कोई यहां पर खिलाड़ी है तो कोई अनाड़ी। आइए सुनते हैं सीता और गीता फिल्म से आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज में ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं श्री 420 फिल्म से, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में।

दोस्तों, दुनिया में क्या चल रहा है? कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान भी आकर यहां देखें कि उनकी सृष्टि में क्या हो रहा है। बहार फिल्म से आइए सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में ये गीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म हाथी मेरे साथी से अभी आपने गीत सुना। बड़ी संग दिल है ये दुनिया, यहां पर किसी को किसी से मोहब्बत नहीं है। बड़ी संग दिल है ये दुनिया, यहां पर किसी को किसी से मोहब्बत नहीं है। अश्कों में छुपा लूं मैं सारे जहां को, मगर मुझको रोने की आदत नहीं है।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से अभी आपने गीत सुना। तूफान तो हर रोज रास्तों को डराने आते हैं, तूफान तो हर रोज रास्तों को डराने आते हैं, पर जिनके मन में आग हो वो रास्ते खुद बनाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, मन में अगर आपके आग है, कुछ करने की इच्छा है, तो आप जरूर कुछ कर जाएंगे। बस इसके लिए जरूरी है मन की शक्ति और आपका आंतरिक विश्वास। वाणी जयराम की आवाज में फिल्म गुड्डी से आइए सुनते हैं ये गीत।

सौतन फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने गीत सुना। इसी के साथ ही अरुणिमा कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीति का आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: इंडिया रिजेक्ट्स द अनवॉरंटेड रेफरेंसेस।
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकस स्टैंडाई ऑन दिस इशू।
0: सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। वहीं देश भर से शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। इस संग्रह में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्य भर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई तेज बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिमी नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली है। नदी के तेज बहाव के कारण 50 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार म्याग्दी में 200 से ज्यादा परिवार विस्थापित हुए हैं। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों, केरलम, माहे, कारेकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना है। भारत के स्पिन गेंदबाज श्री चरणी ने आईसीसी महिला T20 गेंदबाजी रैंकिंग में नया रिकॉर्ड बनाया है। श्री चरणी ने 817 रेटिंग अंक हासिल किए हैं। वो पहले से ही T20 रैंकिंग में दुनिया की नंबर एक गेंदबाज हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेगन शूट का रिकॉर्ड तोड़ा है। श्री चरणी ने महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में भारत के अच्छे प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाई। वहीं ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा भी T20 गेंदबाजी रैंकिंग में आगे बढ़ी हैं। एशियाई खेलों के फाइनल में T20 विकेट लेने के बाद उनकी रेटिंग 754 अंक हो गई है। इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन 723 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना महिला T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में फिर से शीर्ष 5 में शामिल हो गई हैं। उन्होंने एशियाई खेलों के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 79 रन बनाए थे। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था। पहले मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल ने शतक लगाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी।

सुबह के 5:11 और 10 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सुबह सुबह प्रभु का ध्यान सिमरन मन को एकदम शांत कर देता है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में मन को शांत करते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा भजन।

हरिहरन और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में अभी आपने ये भजन सुना। दोस्तों, अगर हम जिंदगी में देखें तो इसमें थोड़ी खुशियां हैं और थोड़े गम हैं, थोड़ी हानि है तो थोड़ा लाभ है, थोड़ी आशा है तो थोड़ी निराशा भी है, और इसी का नाम ही जीवन है।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म पिया का घर से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, ये रंग बदलती दुनिया बिल्कुल पतंग जैसी है। कब कौन क्या रंग बदल लेगा कुछ पता नहीं, और ये भी नहीं पता कि इस पतंग को उड़ाने वाला कौन है। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में फिल्म पतंग से ये गीत।